नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 10 सेकंड हुए हैं। हम अपना प्रसारण आरंभ कर रहे हैं।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। छह बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है।

0: इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवार हमारे मुंबई केंद्र से।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा चरित्र द्वारा होती है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के ठीक बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 255। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 से सुनेगा आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका गीता दत्त पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुन सकेंगे। संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सुबह 11 और रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 1 से, दोपहर 2 से त्रिवेणी,

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली दोपहर 3 बजे से, शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा सेहतनामा।

अंतर्गत प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से जो यूरोलॉजिस्ट हैं से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से सुनिएगा। झरोखा शाम 6:30 से 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आज की फिल्म है दो बदन। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा हास्य नाटिका पड़ोसी का नाता, लेखन दिलीप सिंह का, निर्देशन कुमुद नागर।

रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 9 बजे से रात 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से रंग तरंग।

आपको याद दिला दें, सुबह 9:30 से आज के फनकार आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका गीता दत्त पर, और रात 9:30 से जो आज के फनकार सुनेंगे वो केंद्रित होगा अभिनेता नसरुद्दीन शाह पर। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 255।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी में आज सुनिए राग श्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का प्यार भरा प्रणाम। श्रोताओं, हम इस संधि प्रकाश रागों की चर्चा के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। इसके पहले मैं आप श्रोताओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये मेरी खुशनसीबी समझती हूं कि मैं आज यहां आके हमारे अभिजात संगीत के बारे में थोड़ी कुछ बातें आपको बता सकी, और इसी श्रृंखला का ये आखिरी भाग जो है रागश्री, बहुत ही खूबसूरत। और ये ऐसा राग है कि जिसके स्वर राग पूर्या धनाश्री से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते ही हैं, लेकिन इसका चलन बिल्कुल अलग है और इसका रंग बिल्कुल अलग है पूर्या धनाश्री से। इस राग में भी रिखब और धैवत कोमल हैं, मध्यम तीव्र है। रागश्री जो है संधि प्रकाश राग, पूर्वी ठाट से इसका जन्म होता है। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है और इसका वादी स्वर है रिखब और संवादी है पंचम। जब पंचम और रिखब एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तब रागश्री खिलता है। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने। तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नाइक। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

नाम चिंग चिंग चू चिंग चिंग चू।

हमारी अगली पेशकश गीता दत्त और साथियों की आवाजों में लाजवंती फिल्म से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और सखियों की आवाजों में लाजवंती फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बोले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
4: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
5: जी।
4: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
3: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए गीता दत्त की आवाज में हिल स्टेशन फिल्म का गाना। SH बिहारी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

बात बात बात।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या? अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद।

0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा और SD बर्मन का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम मुनीम जी।

और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजों में पंचायत फिल्म से शकील नुमानी हैं गीतकार और इकबाल कुरैशी हैं संगीतकार।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में काला बाजार फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के हैं बोल और एस डी बर्मन की है तर्ज़।

0: से लोन अप्लाई करो, सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम लव मैरिज।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट

लेके घर आए, घर आकर पछताए, सब्र की डोरी टूट।

अगला गाना हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल और तर्ज ओपी नैयर की।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप आए बाहर आई फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
4: तुमको भी तो ऐसा ही कुछ
5: कैसा कैसा

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: बाईस जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
4: मुबारक हो सबको, समय
3: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
3: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के और

आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दिल एक मंदिर फिल्म से, उसका शीर्षक गीत रफी, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हजरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन की है तर्ज़।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिल एक मंदिर फिल्म का गाना। गीतकार थे असर जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम ही रही प्यार के। ये कार्यक्रम श्रोताओं हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली

0: जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में

0: मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी

0: खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं, हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है, शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे बहुत मजबूत होता है वो इंसान। हाँ।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। कुछ पाने

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: वार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर, सदाबहार नगर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं गोरी तेरे प्यार में, इस फिल्म के गाने के साथ नीतीश कदम और श्रुति पाठक की आवाजें, कौशल मुनीर के बोल, विशाल शेखर की तर्ज बोल है दिल डफर।

सोचता हूँ रात भर क्यों हुआ है दिल डफर। ये गाना भी आप सुन रहे थे गोरी तेरे प्यार में, इस फिल्म से। लीजिए अब सुनिए मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कर की आवाजों में ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का गाना। कुमार ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है मीत ब्रदर्स ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 8667 पर भरपाई से मुक्ति पाएं।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना। शेखर राव जी यानी सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजें हैं। अन्विता दत्त ने लिखा है इसे, और संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
5: एक और आ गया।
6: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां, आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए नरेश अय्यर, जसप्रीत जस और आर्या की आवाजों में एक दीवाना था इस फिल्म का।

लीजिए अब सुनिए अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणबीर कपूर की आवाजों में बेशरम फिल्म का ये गाना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में एक पारंपरिक रचना जो गुलाब गैंग फिल्म की थी। और दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ये दिवस 20 जुलाई 1969 को मानव द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरकर मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिवस का उद्देश्य चंद्र अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा, कल्पना और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इसे केवल आस्था और साहित्य का विषय माना जाता था, है ना? किंतु आधुनिक विज्ञान ने इसे अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। आज अनेक देश चंद्रमा पर जल, खनिज संसाधनों तथा भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। भारत ने भी चंद्र अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं के परमाणु को खोजकर विश्व को एक नई दिशा दी, जबकि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला विश्व का पहला तथा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया। इन उपलब्धियों ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और देश की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। ये दिवस युवाओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि उत्पन्न करने का भी प्रेरक अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम है वन मून वन विजन वन फ्यूचर। चित्रों कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं भारत विद भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुखविंदर सिंह और KMMC सूफी एंसेंबल की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना सुनिए।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस दे

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों आज विश्व शतरंज दिवस है यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस दिवस का उद्देश्य शतरंज के खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वीर भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। लीजिए सुनिए मंच म्यूजिक हबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज सुनकर ये गाना।

0: आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हमारी श्रोता सुन रही थी नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। ये कार्यक्रम श्रोताओं हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं। इस समय आप सुना करते हैं हमारा प्रोग्राम आज का अखबार। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम आज का अखबार।
3: आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आज का अखबार प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और सभी श्रोताओं का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी तो हमारे सभी श्रोता कैसे हैं? भाई आप अच्छे होंगे, ऐसी हम कामना तो हर रोज ही करते हैं। आप स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे, और अगर नहीं भी हैं किसी कारण तो आप खुश होने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब देखिए ना, सप्ताह का ये पहला दिन है, सोमवार, तो नया दिन है तो नई कोशिश जरूर होनी चाहिए। इस दिन को हम वैसे भी नई शुरुआत के रूप में मनाते हैं, नई ऊर्जा का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। अब ये जो दिन है ना, अगर देखा जाए तो हमें सिखाता भी है कि पिछले सप्ताह जो हुआ उसे अब हम भूल जाएं और उससे अनुभव जो हमें मिला है उससे सीख ले लें और एक नए उत्साह के साथ आगे हम बढ़ें, है ना दोस्तों? तो एक नया अवसर भी हमें देता है ये सोमवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन। अवसर किस बात का? भाई अपने जो अधूरे काम रह गए थे पिछले सप्ताह वो पूरा करने का अवसर, कुछ नए लक्ष्य तय कर सकते हैं आप। और फिर कुछ सोचा होता है, कुछ सपने होते हैं जो नहीं कर पाए आप पिछले सप्ताह में, तो उनकी तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं आप। बीता हुआ सप्ताह हमेशा ही, आप महसूस कीजिएगा, हमें एक अनुभव देकर जाता है, और एक नया सप्ताह जो होता है ना वो नई उम्मीदें लेकर आता है। तो आइए फिर इसी सकारात्मक सोच के साथ इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

जी, चांद की दुनिया कितनी प्यारी दुनिया है ना, और एक प्यारा सा सपना कि बस ऐसी ही दुनिया हो जहाँ पर सब प्यार ही प्यार से रहें और किसी के बीच कोई भी मनमुटाव ना हो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सुबह सवेरे का ये समय है और हमने आपको रात का चांद का गाना सुनाया। चलिए कोई बात नहीं, आपका कन्फ्यूजन हम कर देते हैं दूर। दरअसल आज है प्यारे श्रोताओं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। हर साल आज ही के दिन इसे हम मनाते हैं। अब आप सोच लेंगे कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। दरअसल आज ही के दिन मानव इतिहास की एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि जो है उसकी याद में हम ये मनाते हैं। अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था, अगर आपको याद हो तो। अब चंद्रमा की शांतिपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है क्यों हम इस दिन को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक दूसरे जो देश हैं आपस में किस तरह से चांद पर जाकर शोध कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इसको जांचने के लिए, परखने के लिए, इसकी ओर कदम बढ़ाने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, बड़े ही रोचक से कुछ तथ्य हैं जो हम ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। चंद्रमा जो है ना, हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और जानते हैं आप इसकी दूरी कितनी है हमारी धरती से? ये है 384,000 किलोमीटर। और भाई, वहाँ का वातावरण तो ना के बराबर है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। और हमारे भारत की बात करें तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरा था। इससे भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया था। तो श्रोताओं, चांद सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, हमारी जो जिज्ञासा है विज्ञान में और विज्ञान में जो नई संभावनाएं हैं उसका भी प्रतीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि सपनों को सच करने के लिए जिज्ञासा, ज्ञान और फिर लगातार कोशिश करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए, चांद के बारे में तो हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, अब आपको जानकारी देनी है कि बीते कल में देश विदेश में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा। तो चलते हैं पहले राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियों की ओर। श्रोतो, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई हैं। मोल्डोवा, मैसेडोनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, ये तो आप जानते ही हैं। अस्पताल से ही उन्होंने संदेश जारी किया कि संसद मार्च को आजादी का दूसरा आंदोलन करार देते हैं। पत्नी गीतांजलि ने कहा, मानसून सत्र में शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाने का ठोस आश्वासन मिला तो वांगचुक आज कर सकते हैं अनशन समाप्त। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना सरकार की मनमानी नहीं है, वांगचुक हिरासत में नहीं है। वहीं सीजेपी का संसद चलो मार्च है आज, पर दिल्ली पुलिस की नहीं मिली है अनुमति। नीट विवाद में नई जानकारी मिली है, ओएमआर शीट से की गई छेड़छाड़, एआई की मदद से की गई तैयार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में शब्द संग्रहालय के पहले

0: चरण का उद्घाटन किया। भाषा और संस्कृति को राष्ट्र की पहचान का मूल आधार बताया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया बोइंग 787-8 विमान के मृतक यात्रियों के परिवारों ने मांग की है कि ब्लैक बॉक्स डाटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। उन्होंने पूछा, शुरुआती दौर में मिली जानकारी की सामग्री क्यों रखी जा रही है गोपनीय? आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। विपक्ष भी कई मुद्दों पर रहेगा आक्रामक। सत्र के दौरान सरकार 5 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम। राजौरी के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में की गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। और श्रोताओं, होटलों में ग्राहकों के बिल में बिना अनुमति सर्विस चार्ज जोड़ने पर देश भर के 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। CCPA ने जुर्माना लगाते हुए राशि लौटाने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले ये एक संदेश।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हमारे श्रोता सुन रही हैं प्रोग्राम आज का अखबार। ये प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां इस तरह से हैं। श्रोताओं, अमरीका ने नए सिरे से एयर स्ट्राइक शुरू की। तेहरान का दावा, ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास किया गया हमला। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, ना करें ईरान की यात्रा, और वहां रह रहे भारतीयों से कहा तुरंत वापस लौटें। चीन ने पनडुब्बी से परमाणु ले जाने वाली मिसाइल का किया गुपचुप परीक्षण। भारत समेत प्रशांत क्षेत्र के देशों की बढ़ी हैं चिंताएं। एक रिपोर्ट में कहा गया अमेरिका ईरान के युद्ध की आड़ में चीन ने किया ये परीक्षण। नेपाल के सिक्कों से हटेगा विवादित लिपुलेख और काला पानी वाला नक्शा। नेपाल सरकार का फैसला, सिक्कों पर अब 7वीं सदी के लोग गयाकर मठ की दिखेगी तस्वीर। और पेरू में 5.5 तीव्रता का आया भूकंप, 5 लोगों की हुई मौत, 20 से अधिक हुए हैं घायल। खबरों की सुर्खियां ट्राई सिटी से। चंडीगढ़ की बात करें तो यूटी प्रशासन ने नगर निगम में 276 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। सरकारी एजेंसी के जरिए भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। जॉर्डन में चंडीगढ़ की जूडो खिलाड़ी एंजल यादव ने जीता कांस्य पदक। पीजीआई की हेरिटेज स्टूल की अमेरिका में होगी नीलामी। विदेश मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप करने का किया गया है अनुरोध। सेक्टर 19 में बन रहा नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस। 24 घंटे मिलेंगी हाईटेक पोस्टल और आधार से जुड़ी सर्विस। अगस्त से होगी शुरुआत।

चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को बिजली वितरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है। सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए नाबार्ड प्रोजेक्ट के तहत

0: 20 करोड़ से अधिक का फंड जारी किया। चंडीगढ़ में पहली बार 21 जुलाई से होगी ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ

0: हाँ ये रूम अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
4: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
4: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: आज का अखबार प्रोग्राम हमारे श्रोता सुन रहे हैं। तो श्रोताओं, मोहाली में CBI की विशेष अदालत ने 2004-2005 के खरीद सीजन में घटिया चावल स्वीकार करने के आरोप में 9 अधिकारियों और 8 निजी व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा दी है। उधर पंचकुला जीरक बाईपास के लिए कटेंगे कम से कम 4,126 पेड़। हजारों पेड़ों के कटने के बाद दूसरी जगह लगाने की भी मंजूरी मिली है। बात करते हैं अब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना में 135 मरीजों को 2,71,00,000 रुपए के उपचार का मिला है लाभ। मान सरकार की कैशलेस स्कीम में 17 से 35 साल के मरीजों ने लिया सबसे अधिक फायदा। बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए संगठन का किया विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब के विभिन्न संगठनात्मक जिलों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति की। हिमाचल से बिजली खरीदेगा पंजाब, दोनों राज्यों के बीच जल्द होगा पावर परचेज एग्रीमेंट। पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन ने 2026 के लिए वार्षिक खेल कैलेंडर जारी किया। 7 अगस्त से 13 दिसंबर तक होंगी प्रतियोगिताएं। पंजाब और हरियाणा में श्रोताओं 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। दोनों राज्यों के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों पर 12 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा हो सकती है। हरियाणा में युवाओं को मिलेगी गाड़ियां स्क्रैप करने की ट्रेनिंग। कोर्स के लिए 10 संस्थान को मिलेंगे 25 लाख रुपए। रोहतक में 22 से 29 जुलाई तक होगी 4 जिलों के अग्निवीरों की भर्ती रैली। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का किया विस्तार। किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रदेश में बिजली और पीने के पानी पर संकट गहराया। गांव और शहरों में लग रहे लंबे बिजली कट। सोनीपत में 2,200 शिकायतें पहुंची। 4 जिलों में हुए जाम और प्रदर्शन, मंत्री विज ने किया दावा, बिजली की सप्लाई पूरी दी जा रही है। और इससे पहले कि हिमाचल की बात आपसे करें, हम आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं, आज सुबह 10:05 पर होगा प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। तो आज का विषय आप नोट कर ली, विषय है खरीदारी के लिए थैला घर से ही लेकर चलें। जी, आज का विषय है खरीदारी के लिए

जी, तो चलने का नाम ही जिंदगी है। जो रुक गया, जिंदगी उसे ही रोक देती है। तो आप इस समय सुन रहे हैं, अपने श्रोताओं को हम बता दें, प्रोग्राम आज का अखबार। ये प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय प्रसारित किया जा रहा है। खबरों की सुर्खियां कुछ और भी हैं। हिमाचल की सुर्खियां आप तक पहुंचानी है, खेलों की बात भी होगी और मौसम की बात भी आपसे करेंगे। उससे पहले कुछ संदेश सुन लें।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: अच्छा श्रोतो, आपको हम ये भी बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी है। हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को श्रोतो पेरिस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। फिडे के बारे में आपने सुना होगा, और ये तो आप जानते ही होंगे कि शतरंज की जो उत्पत्ति है वो हमारे भारत में ही मानी जाती है। भारत ने विश्व को कई महान शतरंज खिलाड़ी दिए हैं। विश्वनाथन आनंद ने भारतीय शतरंज को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई, और हाल ही के वर्षों में आप जानते होंगे डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगेसी जैसे जो युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। तो बात करने वाले थे हम आपके साथ हिमाचल की। अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा को हिमाचल बोर्ड ने 10+2 की समकक्ष मान्यता दी है। केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए ही ये लागू होगा। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को भारत में प्रवेश प्रक्रिया में मिलेगी सुविधा। शिमला चौपाल दौरे में PWD अधिकारी की गैर मौजूदगी पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारी से मांगा लिखित स्पष्टीकरण, कहा जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता स्वीकार नहीं होगी। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है श्रोताओं। सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। मणिमहेश यात्रा पर भी अगले 3 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। IIT मंडी ने किया बड़ा शोध, कम रोशनी में भी मिलेगी कोशिकाओं की साफ तस्वीर, कैंसर की पहचान होगी आसान। हिमाचल सरकार का फैसला, JOA IT जॉब ट्रेनिंग को मिलेगा 12,500 रुपए मासिक मानदेय। हालांकि मल्टीटास्क वर्कर्स के मानदेय पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। खेलों की बात करें तो PV सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन का फाइनल जीत लिया है। जापान की अकाने यामागुची को हरा कर ये खिताब जीता है, और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इंग्लैंड ने तीसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत से जीता। रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली। फीफा फुटबॉल के फाइनल में स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में टोरेस के निर्णायक गोल से अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने चंडीगढ़ शहर में 20 से 23 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम, और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही कार्यक्रम का समय यहाँ पर हुआ समाप्त। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
4: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
5: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
6: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
7: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: 10 बजने वाले हैं श्रोताओं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाउ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भरतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मालडोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलग जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। 10:05 हुए हैं, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, लीजिए अब सुनिए फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
4: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम सुन रहे हमारी सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत। और भाई आज हमारे साथ जो विषय है, मतलब जो विषय आपके लिए चुना है वो है खरीदारी के लिए थैला घर से ही लेकर चलें। इस विषय से आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस विषय पर बात करनी है। हमारे श्रोता काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी जागरूक हैं, तो विस्तार में बात करते हैं इसके बारे में आप सबसे। आपके क्या विचार हैं? लेकिन पहले एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सुनीता भगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सी कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक है मैडम जी।
0: अच्छा, अभी तो खुश भी होगी होंगी, बारिश हो रही है बाहर?
1: बारिश हो रही है जी, बहुत बारिश हुई है
0: जी। गर्मी का प्रकोप कुछ कम हुआ है?
1: कम हुआ होगा जी।
0: और मानसून की आमद है
1: जी। जी शांति मिलेगी।
0: जी जी जी,
1: ठंडी आएगी।
0: बहुत देर से इंतजार था बरसात की फुहारों का, तो चलिए अच्छा है, आप मौसम एंजॉय कीजिए। लेकिन साथ ही साथ बातचीत कीजिए हमारे साथ आज के विषय पर। बताएं आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
1: मेरा ये विचार है खरीदारी के लिए हमें थैला जरूर ले जाना चाहिए। पॉलीथीन वगैरह में कुछ न ले जी, घर से थैले बने बनाए मिलते हैं जी।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: अपना हमने तो जी 10 थैले रखे हुए हैं।
0: अच्छा जी,
1: छोटे छोटे सब में अलग अलग सामान डलवाते, चीनी अलग, आटा अलग, आलू प्याज अलग, सब्जी अलग अलग।
0: ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, ये बड़ी अच्छी बात है कि हर चीज के लिए अपने अलग अलग थैले बना के रखे हैं। कपड़े के थैले हैं
1: जी? कपड़े के हैं जी।
0: अच्छा जी,
1: अपना घर में सी लेते हैं हम, बाकी बने बनाए भी ले लेते हैं जी।
0: तो
1: थैले मिलते हैं आजकल
0: भाई, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। ये पहली ही कॉल है आपकी और इतनी अच्छी बात आपने कही है कि आप तो कम से कम बहुत जागरूक हैं इस बारे में
1: जी। शुरू से ही हमारे पिताजी ने आदत डाली हुई है हमें, थोड़ी दिन के तो लफाफे फट भी जाते हैं जी,
0: फट जाते हैं और साथ में बहुत हानिकारक हैं, सबको पता है
1: हानिकारक। हम तो इनको लेने से कोई अगर देना भी चाहे ना सब्जी वाला, हम नहीं लेते, हम थैले में डलवा लेते हैं
0: जी। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा।
1: मैंने पॉलीथीन पे एक दो लाइनें भी बनाई हुई है।
0: हाँ हाँ जरूर बताइए।
1: पॉलीथीन तो एक बीमारी है, ना जाने कब जाएगी, सब कुछ जानते हुए बनते अनजान, फिर भी कर बैठते नादानी।
0: अरे वाह वाह, बहुत ही अच्छी पंक्तियां आपने लिखी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुनकर ना हमारे श्रोताओं पर बहुत सारा असर हो जाएगा। चलिए,
1: ये बहुत एनवायरमेंट बचाएगा जी, हमारा तो जीवन बचा लेगा अगर ये जो थैला ना अपना कपड़े का
0: जी जी जी,
1: ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है।
0: आपने

0: ये हमारा भविष्य है जी अपना, अगर हम कपड़े का थैला लेके चलते हैं पॉलीथिन से तो हमारा भविष्य भी खराब होता है, आने वाले पशु पक्षी हर इंसान जो प्राणी है उसका भविष्य बहुत अंधकार में पड़ जाता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा है, और आपने पॉलीथिन बैग कितने हानिकारक हैं ये भी बता ही दिया, और थैला लेना कितना जरूरी है ये भी आपने बताया।
0: एक लाइन और बता दूंगी
1: जी जरूर।
0: हम कपड़े के तो कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़ा कपड़े के कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन कपड़े का थैला ले जाते हुए शर्माते हैं, हमें शर्माना नहीं चाहिए जी।
1: जी जी, और
0: कपड़े का थैला ले जाते हुए
1: जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। आपने हमें फोन किया, अपना समय दिया, इतनी अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश के लिए।
1: अच्छा जी, त्रिपुरा से बात कर रहे हैं आप।
2: जी जी,
1: स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का टॉपिक जो लेके आई है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए हम सबको पहले जागरूक होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम बार बार चिल्लाते रहते हैं या फिर सरकार से दावा करते हैं या फिर खुद ही मतलब कि अभियान चलाते हैं कि ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को बंद करें, क्योंकि कंपनियां देखिए वो तो बंद देखिए हर कीमत पे। अगर हम लोग जागरूक होंगे तभी ये, क्योंकि हम लोग अगर इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे तो खुद ब खुद ये बंद होंगे, लेकिन हम ही अगर जागरूक नहीं होंगे, हम ही जाकर दुकान से मांगेंगे कि हम थैला नहीं लाते हैं घर से। और
1: जी, तो आपके कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि सरकार की तरफ ही नहीं देखना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी अपनी भी तो कुछ फर्ज है, है ना।
2: जी जी जी,
1: हम खुद प्लास्टिक को ना कहेंगे, कपड़े का थैला अपनाएंगे, तो फिर अपनी इस धरती को स्वच्छ रखने में, सुरक्षित रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए आजकल क्या है कि हम अगर अपने कभी जाते हैं तो हाथ में अगर एक छोटा सा कपड़े का थैला हो गया या फिर जो बस्तों का बना हुआ जो थैला हो गया वो हम लेके जाते हैं, तो इसमें हम इसमें हल्का भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, और जाते हैं तो अपने आप को संभाल लेते हैं, तो इससे हम लोगों को इसमें अपना पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा और हम सब अपना अपना काम भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ना, इस धरती पर अगर हमें रहना है तो धरती को साफ सुथरा भी तो रखना होगा ना, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी है। तो अच्छी बात है, घर से जब भी निकलें तो अपना थैला जरूर लेकर जाएं सामान लेने के लिए, और प्लास्टिक की थैलियों की तरफ ही ना ताकते रहें, और उनको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
2: जी जी बिल्कुल
1: जी, फोन करने के लिए आपका शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया, धन्यवाद।
1: अच्छा श्रोतो, अगली कॉल हम लेते हैं, लेकिन एक संदेश है पहले, वो हम आप तक पहुँचा दें।

0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। और आज का विषय हम अपने सभी उन श्रोताओं को बता दें जो शायद अभी अभी जुड़े हों हमारे साथ। आज का विषय है खरीदारी के लिए थैला घर से ही लेकर चलें। तो श्रोताओं, इस विषय पर आपका क्या सोचना है, आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ले लेते हैं इस प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: आपका नियमित श्रोता धीरज रबारी, गुजरात।
0: अच्छा जी, गुजरात पहुंच गए अब हम सीधे त्रिपुरा से। देखिए, बस यही खूबसूरती है इस प्रोग्राम की, पूरे देश के श्रोताओं से हम बातचीत कर लेते हैं।
1: आप सटीक विषय लेकर आप लोग आते हैं तो इसमें हमें जुड़ने का बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। कहीं क्या कहना चाहेंगे
1: इस बारे में? कहना जाए तो हम अकेले से ये काम नहीं होने वाला है, सारे हम भारतवासी हैं। हमें इस जो मुहिम है कपड़े की थैली का, जो पहले हम व्यवहार करते थे खरीदारी करने के लिए घर से कपड़े की थैली, जैसा सामान लाने का है ऐसा लेकर पर्व प्रबंध करके हम निकलते थे। पहले तो साधन सुविधा नहीं थी, अभी तो साधन सुविधा है, खुद की गाड़ी है, खुद की बाइक है, कुछ के स्कूटर है। पहले तो क्या हम चल के आना पड़ता था, तभी भी हम कपड़े की थैली लेकर जाते थे और बहने भी ज्यादा वजन अपने सर पर रखती थी। अभी वजन रखने का एक सवाल ही नहीं, अब खुद कपड़े की थैली में अपने गाड़ी में रखो। और अभी क्या है, फिलहाल शिक्षित वर्ग भी इस बारे में बहुत पीछे है, हमें

0: मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षित वर्ग इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं, सोचने की जरूरत आवश्यकता है। ठीक है, कभी कभार हमारे अनपढ़ लोग कभी कभार ऐसा करते हैं, लेकिन शिक्षित वर्ग को तो इस बारे में बहुत समझाने की जरूरत है और शिक्षित वर्ग को पहल करनी चाहिए। इसमें मैं भी आ गया, तो कपड़े की थैली लाने से हमें कई पॉलीथीन थैली बचा सकते हैं और पॉलीथीन बचाने से हमारा पर्यावरण बहुत बचेगा और
1: सुरक्षित रहता है। जी जी,
0: पर्यावरण बचने से हमारा जिंदगी भी बच सकती है, इसमें पेड़ पौधे और हम भी आ गए।
1: अब देखिए, हम जब बाजार जाने लगते हैं ना, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं, ये लेना है, वो लेना है, यहाँ से ये लेंगे और वहां से वो लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस लिस्ट में ना सबसे पहले आप लिखें थैला, ताकि आपको याद रहे कि आपको घर से जब निकलना है तो थैला अपना साथ में ही रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कई कई बार हमने देखा भी है कि वहाँ हम कितनी भी चीजें लेते हैं उसमें अलग अलग पॉलीथीन थैली की डिमांड करते, वो भी जायज नहीं है। हमें खुद पहले हम जो लाके थे बाजार से जो भी चीज लाते, फिर घर आके बंटवारा करते। अभी ऐसा भी नहीं, अभी हमारे घर में थोड़ी थोड़ी कपड़े की थैली भी हम खुद बना सकते हैं और बाजार में मिल सकती है। तो ऐसा ऐसा करके हम पॉलीथीन थैली लाके हम खुद अपने पैर पर कुहाड़ा मारते हैं, वो बात तो ध्यान में रखते हुए आगे का समय हमें बहुत यानी बहुत गंभीर खतरा मंडरा है।
1: जी बिल्कुल, अब देखिए अभी से कितनी गर्म हो गई है हमारी धरती और आने वाले वर्षों में तो और भी बुरा हाल होगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम किस तरह का वातावरण छोड़कर जाएंगे, उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।
0: बिल्कुल सुनीता जी, आपने सही फरमाया, और देखा जाए तो इस पहल में थोड़ा सरकार को भी हमें सूचित करना है, उसको भी एक पॉलीथिन के लिए
1: सरकार का भी सहयोग करना पड़ेगा ना।
0: हाँ, और सरकार को भी खुद को भी इसके आगे पहल करनी पड़ेगी। हाँ, धंधा उसको थोड़ा रोजगार को, ये पॉलीथिन का जो रोजगार है उसके में थोड़ा यानी हम सोचे और उसके बजाय दूसरा उद्योग स्थापे, तो इसमें क्या है, ये जो कपड़े की थैली अगर बाजार में आती है तो बाजार में लेने के लोग जाएंगे लुभाएंगे, लेकिन अगर बाजार में थैली नहीं आएगी तो कोई नहीं लेगा। यानी दोनों साइड पर विचार करने की जरूरत, आने वाले समय की गंभीरता देख के।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर हम सरकार और आम नागरिक हम मिलकर अगर इस ओर प्रयास करें ना, खासकर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हम कम करें, तो पर्यावरण को हम सुरक्षित बना सकते हैं। धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी, नमस्ते, नाम बताएं अपना।
2: जी, योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी, छत्तीसगढ़ से आप बात कर रहे हैं और हम यहाँ चंडीगढ़ में आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, नाम है जिसका हेलो चंडीगढ़।
2: जी जी,
1: कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है।
1: छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताएं पहले।
2: मौसम अभी 2-3 दिन में बारिश हुआ है।
1: आज तो नहीं हो रहा?
2: अभी फिलहाल नहीं हो रहा।
1: अच्छा जी, तो हम आपको बताएं, आज हमारे यहाँ तो भाई बहुत बारिश हो रही है। जी जी, जी। चलिए, देर सवेर आपके वहाँ पर भी मॉनसून पहुँच ही जाएगा, बरसात शुरू हो ही जाएगी। हम अपने विषय पर लौटते हैं, तो बताएं आप घर से जब निकलते हैं या आपके घर की महिलाएं जब खरीदारी के लिए निकलती हैं तो भाई थैला लेके जाती हैं या फिर प्लास्टिक की थैलियाँ जो मिलती हैं बाजार से वो ले लेती हैं?
2: नहीं, ज्यादातर तो देखिए मार्केट तो हम ही जाते हैं।
1: अच्छा जी।
2: और हमारे यहाँ मतलब कपड़ा सिलते भी हैं, तो उसी से जो कपड़े वगैरह होते हैं
1: थैली बना लेते हैं।
2: अच्छा। बनाने का भी काम आ जाता है।
1: चलिए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया।
2: और ऐसे मतलब 4-5 ठो थैले हैं अपने पास।
1: हाँ हाँ, चलिए बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कपड़ा सिलते हैं, तो आप दर्जी का काम करते हैं?
2: जी, घर में करते हैं।
1: अच्छा, तो फिर तो आप एक और काम कर सकते हैं, समाज सेवा ही है वो। जब भी आपके पास कोई कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं ना, तो आप उनको ये सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि भाई आपका जो कपड़ा बचेगा अगर आपको बुरा ना लगे तो हम एक थैला सी देते हैं आपके लिए।
2: जी जी,
1: है ना। इससे क्या होगा,
2: वास्तविकता हम देखते हैं, जैसे हम तो अपना प्रयास 100% करते हैं, लेकिन जैसे हम मार्केट जाना होता है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि पॉलीथीन में दे दीजिए, इसको इसमें दे दीजिए, ये मतलब इस ख्यालात को चेंज करना होगा। अंत में अगर हम पॉलीथीन से लाभ ही लेते हैं तो घर में वो फिर कचड़े का ही काम आता है, वो पॉलीथीन का कोई यूज होता है।
1: देखिए, पॉलीथीन जो प्लास्टिक जो है ना, ये सबको समझना होगा कि ये खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है ना। तो जब ये जमीन के अंदर मिट्टी में जब ये पड़ा रहता है तो गलता रहता है, तो उसकी जो केमिकल्स होते हैं, जो उसमें कुछ ऐसे बुरे तत्व होते हैं ना, वो जमीन की जो

0: मिट्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं
1: जी जी,
0: और फिर वही मिट्टी की खुशबू जब पूरे वातावरण में आती है तो वो हम सबको नुकसान पहुंचाते हैं।
1: हाँ जी,
0: है ना, तो ये बात समझनी होगी सबको। तो चलिए, आपने तो थैले बना रखे हैं और आप लेके भी जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। कोशिश कीजिएगा आपके आसपास और भी जो लोग हैं उन्हें भी आप ये बात समझा सकें, उन तक ये बात पहुंचा सकें। ठीक है, चलिए जी, फोन करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा जी, तो अब एक संदेश आपके लिए।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज का विषय हमने वही चुना है कि घर से आप थैला लेकर जाएं जब भी बाजार जाएं, क्योंकि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है वातावरण के लिए। और अब जैसे बरसात शुरू हो रही है तो आप भी जानते ही होंगे, समझते ही होंगे कि बरसात के दिनों में जब बहुत सारा पानी गिरता है तो ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, तो उससे गंदगी भी होती है और नदी नालों में रुकावट भी हो जाती है। पानी के साथ बहकर जब ये किसी नाली में चली जाती हैं या नदियों में चली जाती हैं या आपके घर की जो नालियां हैं उनमें भी कभी कभी फंस जाती हैं, तो इस बरसात के मौसम में, इस पानी के मौसम में भी आपको जागरूक रहना है कि प्लास्टिक की थैली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। आप करके तो देखिए, थैला ले लीजिए ना, कपड़े का ले लीजिए, जूट का ले लीजिए और वही लेकर आप बाज़ार में जाइए, और फिर ये जो बरसता हुआ पानी है ना आपको अच्छा लगेगा।

0: जी, तो पानी का ये मौसम आप ज़रूर इंजॉय करें, इसका आनंद लें और बहुत सारी बातों का इसके साथ साथ आप ध्यान भी ज़रूर रखें। और एक बात और जो जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक जो है उसे हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। बाज़ार आप जब भी जाएं तो अपना थैला साथ लेके जाएं। एक छोटी सी पहल जो आप करेंगे ना, ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा योगदान होगी। तो आज हेलो चंडीगढ़ में हम बात कर रहे हैं अपने घर से ही थैला लेकर चलने की। ले लेते हैं इस प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैडम मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, शिमला संकट मोचन से।
0: अच्छा जी, संकट मोचन से बात कर रहे हैं।
1: जी मैम, जी मैम।
0: जी जी, आपकी आवाज बड़ी साफ पहुंच रही हम तक। तो हमारा ट्रांसमिशन आप तक बिल्कुल साफ पहुंच रहा है।
1: बिल्कुल क्लियर मैडम।
0: चलिए बड़ी अच्छी बात है ये। कभी कभी बारिश का माहौल हो, मौसम अच्छा ना हो, तो फिर आवाज में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है।
1: जी मैम, जी मैम, जी मैम।
0: अच्छा जी, तो कहें क्या कहना चाहेंगे।
1: मैडम मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब कोशिश हमें ये करनी चाहिए जब भी हम घर से निकलते हैं तो अपना थैला कपड़े का हो चाहे जूट का हो, वो हमें साथ लेके चलना चाहिए।
0: बिल्कुल जी, कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। एकदम से अपनी आदत बदल दें अब हम, कि घर खाली हाथ नहीं जाना है बाजार। हमें ये हमें सोच के नहीं दिमाग में रखना है कि जाएंगे तो रेड़ी वाला या दुकान वाला हमें प्लास्टिक में की जो थैली है उसमें चीज दे ही देगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। और अपना थैला घर से आप जरूर लेकर चलें।
1: हाँ जी मैडम, क्योंकि हम जैसे मार्केट में जाते हैं ना तो वहाँ से प्लास्टिक के बैग में वो सामान दे देते हैं, तो लोग ज्यादातर ये करते हैं कि जैसे वो घर लाते हैं ना तो उसमें जैसे खाली खुली करके फिर कूड़ा वगैरह उसमें डाल के फिर कभी कोई तो अपनी गाड़ी में जैसे जाते बार कहीं फेंक देंगे रोड के साइड में।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो उससे क्या होता है मैडम, एक तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और दूसरे जो हमारे पशु जानवर वगैरह होते हैं ना तो वो इसको खा लेते, जिससे उनके ना वो गले में फंस जाते पेट में।
0: जी जी जी जी,
1: तो वो बड़ा नुकसानदायक है मैडम वो प्लास्टिक जो है ना।
0: जी यही बात हमने अभी अपने श्रोताओं से की, प्लास्टिक है ही नुकसानदेह।
1: जी मैडम।
0: और
1: जी।
0: सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हमारे जानवरों के लिए भी बहुत घातक है। अब देखिए ना, जानवर बेचारे वो जो गली मोहल्लों में, सड़कों पे, नालियों में ये जो प्लास्टिक की थैलियां पड़ी रहती है ना,
1: जी मैम,
0: तो कई बार जानवर उसे खा लेते हैं, निगल लेते हैं।
1: हाँ, ज्यादातर देखा गया कि वो मतलब वो खा लेते हैं और फिर बेचारे
0: उनकी
1: मतलब
0: जान तक चली जाती है
1: उन्हें ना।
0: और ऐसे ही अगर हम अपने समुद्रों की बात करें, है ना, समुद्र तट पर जाते हैं लोग गर्मियों के मौसम में अक्सर घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां पर दिल खोल कर समुद्र के जो तट है उनको खराब करते
1: हैं, देते हैं वो प्लास्टिक जो है ना, और वो कूड़ा वगैरह जो कुछ भी होता है उनका खाने पीने के खाली पैकेट वगैरह।
0: बिल्कुल। और फिर वो जो पानी में चला जाते हैं ना प्लास्टिक की थैलियां, तो हमारी जो मछलियां हैं या और भी जितने समुद्री जीव हैं वो भी निगल लेते हैं, वो तो उनकी प्रजातियां जो हैं वो भी समाप्त होने पे की कगार पर आ जाती हैं।
1: हाँ, इसका ये मेन कारण है वैसे देखा गया है मैडम।
0: तो हम इंसान है ना, तो हमें तो ईश्वर ने बुद्धि दी है।
1: हाँ जी।
0: हम सोच समझ सकते हैं, हमें इतनी ताकत दी है उस ऊपर वाले ने, तो हमें तो बिल्कुल सोचना ही चाहिए ना इस बात के ऊपर।
1: जी मैम, जी।
0: जब इतना घातक है ये प्लास्टिक तो घर में हमें रखना ही क्यों है।
1: जी मैडम,
0: है ना। और बाहर से भी, बाजार से भी हमें नहीं लेकर आना है।
1: नहीं लेके आना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक बोला।
0: कुछ और कहेंगे?
1: बस मैडम यही है कि मतलब अब ये प्लास्टिक को जो हमको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए।
0: अच्छा, ये तो बताएं आपके घर में भी इग्नोर हो रहा है प्लास्टिक या नहीं?
1: नहीं मैडम, हम तो पूरी कोशिश ये करते हैं कि मतलब प्लास्टिक का जो है कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और उसको जो है हम ऐसा करते हैं कि मतलब इधर उधर नहीं फेंकते, जो थोड़ा बहुत होता है उसको हम जो है वो मतलब जलाकर फिर उसकी राख जैसी बना के फिर उसके वो मतलब मिट्टी में वो कर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही करते हैं आप भाई, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगी कि घर में जितना भी प्लास्टिक है वो बस बाहर फेंक दें आप, और बिल्कुल भी वो इस्तेमाल ना करें। फोन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज

0: विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारी श्रोता सुन रही हैं इस समय प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़. आज का विषय हम बार बार दोहरा रहे हैं आप सबके लिए कि खरीदारी करने अगर आप जा रहे हैं तो थैला जो है वो आप घर से लेकर चलें और प्लास्टिक की थैलियां जो हैं वो बाजार से ना लेकर आ पाएं. संकल्प करना है आपको, हर खरीदारी अपने ही थैले के साथ करनी है क्योंकि इसी में समझदारी है और ये जो है ना हमारी जिम्मेदारी भी है. हमारे कुछ बाकी जो श्रोता हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, आइए जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे. हेलो चंडीगढ़.
2: नमस्कार मैडम जी.
1: नमस्ते जी.
2: मैं संजय बोल रहा हूँ सेक्टर 13 चंडीगढ़ से.
1: अच्छा संजय जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में.
2: हाँ धन्यवाद जी. मैं तो आप बीते बताता हूँ. मैं ना एक बार सैर कर रहा था, मॉर्निंग वॉक.
1: अच्छा जी.
2: काफी साल हो गए. तो एक लड़का साइकिल के ऊपर 8-10 पैकेट दूध के लेकर प्लास्टिक के लिफाफे में आ रहा था.
1: अच्छा जी.
2: तो उसके मेरे बिल्कुल सामने उसके सारे जो दूध के पैकेट सारे गिर गए, फट गया लिफाफा.
1: अच्छा.
2: उसके पास कोई चारा नहीं. अब मैं कैसे उठाऊं इतने पैर, ना साइकिल चलाऊं, इनको संभालूं, कोई उसके पास चारा नहीं. फिर मैंने उसको बोला, मैं देख थैला नहीं ना लेके आया, देख ले अब दिक्कत आई ना. अब मैंने उसको बोला कि अब ऐसे कर, अपने अंदर से बनैन उतार, उसका थैला बना, उसमें डाल, फिर लेके जा.
1: अच्छा.
2: फिर उसने बनैन उतारी, उसमें थैले में वो पैकेट डाले, फिर लेके गया. कहते हैं धन्यवाद, ये तो आइडिया दे दिया.
1: उसे कुछ सबक मिला कि नहीं?
2: हाँ जी.
1: उसे फिर कुछ सबक मिला?
2: सबक तो उसको मिल गया. कहते जी आगे से नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं तो थैला लेके चलूंगा. वो ऐसे वो सबक तो अब यही है कि पता लग गया कि लोगों को पता चल गया कि पर्यावरण तो है ही है, इसको नुकसान. लेकिन ये हम मुसीबत में भी तो फंस सकते हैं
1: जी.
2: हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी तो क्या करेंगे फिर?
1: जी बिल्कुल है. किसी स्विच बो दीजिए तो भी वो फट जाएगा, है ना.
2: हाँ जी, हाँ,
1: तो बहुत
2: हाँ,
1: सारा ढेर सारा सामान जब उसमें दुकानदार डाल के दे देता है ना. अब जब जैसे आप फल खरीदने जाएं या सब्जी खरीदने जाएं तो कई बार देखा है कि ठूस ठूस कर भर दिया जाता है उसमें और फिर हाँ, वो हाँ, आपके घर तक नहीं पहुंचता, वो शायद हाँ, रास्ते में ही कहीं फटकर गिर जाता है.
2: हाँ,
1: तो ये मुसीबत तो है ही, लेकिन पर्यावरण को बहुत मुसीबत.
2: ये सेकंड टाइम आपने प्रोग्राम किया, मैं हर बार ये रिपीट कर देता हूँ ये घटना, क्योंकि नहीं भी सुनी हो वो भी जागरूक हो जाए.
1: चलिए बड़ा अच्छा किया आपने ये घटना शेयर की है, साझा की है. तो जो अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं और प्लास्टिक की थैलियों पर ही निर्भर हैं तो उन्हें जरूर ये सोचना चाहिए कि फायदा इसमें सबका है, सिर्फ उनका नहीं है. पर्यावरण का फायदा होगा जब तो वो तो पूरी दुनिया का फायदा है ना. तो इसी तरह से आप एक समाज सेवा जो है वो भी कर रहे हैं उस हिसाब से, है ना. प्रकृति को अगर हम खुश रखेंगे ना, मेरा तो ये मानना है जो ईश्वर ने प्रकृति हमें बख्शी है, ईश्वर की कितनी बड़ी देन है ये हमें, उस प्रकृति को जब हम हंसता मुस्कुराता रखेंगे तो वो भी हमें वापस वही सब देगी, हमें जिंदगी देगी, जीवन देगी, हंसता हुआ जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन, है ना. और प्लास्टिक जो है वो प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है.
2: और जो लोग हैं वो भी ऐसा है कि अब स्वीपर चंडीगढ़ में तो इतना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया हुआ कि हर 24 मतलब 8 घंटे यहाँ हमारे स्वीपर रहते ही रहते हैं, पत्ता तक नहीं गिरने देते. लेकिन लोग क्या करते हैं, वो बच्चों ने कुछ खाया प्लास्टिक का सड़क पे फेंक दिया, वो ही सफाई करेंगे, है सफाई करने वाले. वो ये नहीं देखते कि ये नेचुरल जो होती है चीजें उनको सफाई करने के लिए, हमारा गंद साफ करने के लिए नहीं है.
1: देखिए ये मानसिकता है, ये जो मानसिकता है ना इसको बदलने की आवश्यकता है. हम बहुत सारे जो समाज में हमारे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं ना, लोग ये सोच लेते हैं कि ये खास काम बस इनका ही है, ये खास काम बस इस वर्ग का है. तो ऐसे नहीं सोचना है हमें. अगर आपको दिख रहा है सामने तो आप खुद भी उसे उठा सकते हैं, दूर फेंक सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं ताकि कोई और, जैसे हमने पहले भी बातचीत की, पशु वगैरह भी खा लेते हैं तो उनका कोई नुकसान ना हो. जी अच्छी बातें की आपने हमसे और पूरी उम्मीद है कि श्रोता जो सुन रहे हैं, देखिए हर श्रोता ना एक नई बात कहता है, हर श्रोता का एक अपना अपना विचार होता है, अलग उसका अपना हम कहें कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल लेवल या मेंटल स्टेटस होता है. तो उस हिसाब से हर श्रोता अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव से बात करता है. तो बहुत सारी श्रोताओं तक ये बातें जब पहुंचती है ना तो बहुत सारी लोगों का भला होता है. आपने समय निकाला हमसे बात की, आपका बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद जी, आपका

0: हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, सतपाल जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैडम, आज तो मौसम बड़ा सुहावना है, बारिश हो रही है।
0: जी मौसम बड़ा सुहावना है तो मन तो हमारा यही कर रहा है कि गाना गा रहे हम। आज मौसम बड़ा बेईमान है।
1: सावन सावन की फीलिंग आ रही है आज।
0: जी जी, आप सावन धीरे धीरे बस समझिए कि आ ही पहुंचा है और मौसम सच में बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना है। तो कोशिश करेंगे आपको यही गाना सुना दें आगे हम इस प्रोग्राम में। फिलहाल तो बात करते हैं खरीदारी की और थैले की। आप बताएं आपके क्या विचार हैं?
1: मैडम हम तो बचपन में थैला ही लेकर चलते थे और हम जब ग्रोसरी की दुकान में जाते थे
0: जी,
1: वो अखबार के जो लिफाफे बनाकर उसमें डाल कर देते थे कोई भी सामान।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो अब जो पैकेजिंग का कल्चर चल पड़ा है, चिप्स हो, दालें हो, चीनी हो, हर चीज पैकेजिंग हो रही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो इसमें देखिए आइसक्रीम भी हो, रैपर कितनी समस्या है। रैपर तो आपको कहते हैं कि 20 साल तक जमीन के अंदर डाल दो फिर भी वो गलेगा नहीं।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: तो ये तो हम लोगों को समझना, हमारी प्रकृति है, हम जो हमारी माँ है धरती है, इसको कैसे बचाना है और पॉल्यूशन से कैसे बचना है।
0: जी जी जी जी,
1: जब तक ये समझदारी हमारे में नहीं आई। मैंने देखा है मैडम, शॉप पे जाते हैं तो लोग दूध लेने जाते हैं तो इंसिस्ट करते हैं कि हमें पॉलीथिन में दिया जाए दूध। प्लास्टिक के थैली में ऑलरेडी दूध आ रहा है।
0: अच्छा।
1: और उसको भी कैरी करने के लिए उनको कैरी बैग भी प्लास्टिक का चाहिए।
0: अच्छा जी।
1: तो घर से लोग थैला लेकर नहीं आते हैं, वो घर से लेकर चलने में सांड के खिलाफ समझते हैं। तो ये समस्या है, बड़े शहरों में ज्यादा है। और मैंने देखा स्टेट बैंक की एक बहुत अच्छी मिसाल मैं देना चाहूंगा। स्टेट बैंक अपने एम्प्लॉय और अपने कस्टमर्स को विथ स्टेट बैंक का लोगो लगा हुआ जूट के थैले बांट रहे हैं।
0: अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और हाथ में लेके चले तो स्टेट बैंक एक बड़ा ग्रुप है तो हमें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है।
0: देखिए ये जो बात आपने कही है ना, हमें उम्मीद है कि बाकी जो संस्थान हैं हमारे शहरों में पूरे देश में, तो वो भी अगर इस आदत को अपना लेना तो बहुत सारी समस्या जो है यहीं पर हल हो जाएगी।
1: तो ये गर्व महसूस होता है कि लोग सोचते हैं कि स्टेट बैंक का अधिकारी है या स्टेट बैंक के अच्छे कस्टमर है तभी स्टेट बैंक ने इनको उपहार दिया है। तो उसमें शर्मिंदगी नहीं होती, वो हम जूट का बैग उठा सकते हैं आराम से।
0: जी बिल्कुल। और आपने ये अपना ये जो कागज के लिफाफों की भी बात की है ना, तो ये भी बड़ी अच्छी बात कही आपने। कागज के लिफाफे ये तो खासकर जो हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे जो रेड़ी फड़ी वाले हैं बाजार में जो लोग बैठे हैं, तो ये बात उनको जरूर सोचनी चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों की बजाय वो अगर कागज के लिफाफे रखें उनमें वो चीजें देना शुरू करें। हालांकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है, हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना इस क्षेत्र में बाकी है।
1: तो हमारी मानसिकता ऐसी होगी बिना मैडम चलान के, बिना डरावे के हम कानून को नहीं मानते।
0: जी जी।
1: तो
0: जी,
1: मैंने देखा है 26 की जो मंडी है अपनी चंडीगढ़ की, यहाँ कई बार जुर्माना लगाया जाता है कि प्लास्टिक की थैली सर्टेन माइक्रोन फिक्स किए हुए हैं उन्होंने, इतने माइक्रोन से ज्यादा की अपनी नहीं रखनी है।
0: जी।
1: वो बायोडिग्रेडेबल क्वालिटी के जो है वही रखनी है आप।
0: जी, बात घूम फिर कर फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं ना तो हमें उनको मानना ही होगा, चाहे वो बाजार वाले हैं चाहे फिर वो हम घर वाले हैं, है ना?
1: जी जी।
0: चलिए, आपने हमसे अपने अनुभव साझा किए, अपने विचार बताए, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।
0: जी जी, नाम बताएं अपना।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: राकेश कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, फिर से शिमला पहुँच गए हम।
2: जी, जी, जी तो शिमला पहुँच गए।
0: आप बताएं हमें कि आपके घर के लोग

0: जब बाजार जाते हैं तो लेके जाते हैं थैला या फिर वही प्लास्टिक की थैलियां उठाकर ले आते हैं?
1: जी जी जी जी, तो हम जब घर से जाते हैं, चाहे हमारे घर से कोई भी जाता है बाजार, तो हमारे जो अक्सर जो है थैले जो है झोला जो है लेके जाते हैं, चाहे छोटा मोटा सामान ना हो, चाहे क्या बोलते कोई भी सामान ना हो, लेकिन पहले एक आदत हुआ करते कि चलो हम खाली जाते, चलो वो बाजार से खरीद लेंगे। पर अब ये है कि घर से कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं, क्या बोलते जैसे जैसे छोटी मोटी चीज लानी या झोला जो है हम लेके जाते हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे होता है कि अगर आप प्लास्टिक कम यूज करते हैं तो उसमें पॉलिथीन वगैरह कुछ भी जो है क्या बोलते बीमारी का ये जो है हमारे शरीर के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चाहे कोई भी हो हमारे घर में, शुरू से ये करते कि अपने घर से कोई भी सामान लाना हो तो अपने घर से जो है बैग या छोटा प्लास्टिक का, जो प्लास्टिक का नहीं है कपड़े का जो है थैला स्थापित करो।
0: अच्छा, तो आपके घर में शुरू से ही ये सब हो रहा है, तो आप तो प्रेरणा है सबके लिए।
1: जी जी जी,
0: आपके मोहल्ले, मैं तो कहूंगी आपके अपने मोहल्ले में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्लास्टिक की थैलियां ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तो उनको भी प्रेरणा दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं कि आप जब घर से जाते हैं, मानो कि आप सोचिए क्या क्या शॉप जाके चीज तो खरीदनी है, लेकिन शॉप जाके आपको खरीदनी है तो उसके लिए अगर आप बाजार से प्लास्टिक आप खरीदते तो छोटा, अगर मानो कि शॉप जाके खरीदनी है 200 की खरीदनी है तो छोटा बैग भी आता है, ऐसा बैग ले सकते हैं जो आप परमार की तरह जेब में भी रख सकते
0: हैं। आजकल तो राकेश भाई बाजार में जूट जो है उसके बने बनाए थैले मिलते हैं, अगर आपको कपड़े का थैला उठाने में शर्म महसूस हो रही है, उसको नहीं भी उठाना चाहते हैं, तो वो भी आजकल डिजाइनर आए हैं बाजार में, हर किस्म का थैला आपको बाजार में मिल जाएगा, है ना, चाहे कपड़े का हो चाहे जूट का हो, रंग बिरंगे थैले, प्यारे प्यारे से डिजाइन वाले थैले, तो क्या हर्ज है वो थैला खरीदने में और फिर उस थैले में चीजें लाने में,
1: है ना।
0: तो आपने सही बात कही ये, तो चलिए हम तो यही उम्मीद करेंगे, जैसे आपके घर में ये रिवाज है तो हम चाहेंगे भारत के हर घर में बस यही रिवाज हो जाए और सब लोग मिलकर संकल्प ले लें कि भाई ये जो प्लास्टिक है ना इसको तो ना कहना ही कहना है, और जो थैला है ना वो खरीदारी के लिए घर से लेकर जाना ही जाना है। चलिए, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो भाई वादा कर लिया था श्रोताओं से कि ये गीत सुनवाएंगे, तो सुन लेते हैं ये, फिर और जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो लेंगे।

0: अच्छा जी, हम तो खो गए इस प्यारे से गाने में क्योंकि मौसम आज बड़ा ही प्यारा है, लेकिन फिर अचानक हमें याद आया कि हमें तो अगली कॉल भी लेनी है। तो चलिए बता दें अपने श्रोताओं को, हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम चल रहा है और घर से थैला लेकर निकलने की बात हम कर रहे हैं। कुछ और श्रोता हैं कॉल पर, सुनते हैं उनका क्या कहना है। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: मैं रामवीर बोल रहा हूं जी, गांव फिरमत जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से।
0: कुरुक्षेत्र से जी। जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जी, बताएं।
1: जो विषय है वो बहुत अच्छा है जी, और वो हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो अपनी इस धरती को एक
0: साफ सुथरा बनाने के लिए। जी जी जी जी,
1: क्योंकि हमें जो जीवन जीने के लिए खाद्य पदार्थ तो चाहिए। अगर दीदी धरती में हम ये प्लास्टिक का वगैरह फैलाएंगे तो वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये तो सबके लिए खतरा है। और दूसरा ये है कि ये थैलियां जब कहीं भी डाल देते हैं तो इनमें पानी वगैरह भर जाता है तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं
0: जी।
1: तो दीदी ये नुकसानदायक, इसका एक नुकसान नहीं है, लगभग फायदा तो थोड़ा सा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है दीदी।
0: जी आपने एक बड़ा अच्छा अभी मुद्दा उठाया है, अच्छी बात कही है। अब जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो मच्छर जरूर पनपते हैं। ये थैलियां जब पड़ी रहती हैं तो इनमें पानी चला जाता है। जब जैसे हम कहते रहते हैं कि गड्ढों में भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, तो इनमें पानी जमा होता है और फिर मच्छर पनपता है।
1: बिल्कुल दीदी, अगर चलो देखो हमें इसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए कि जैसे कोई चिप्स वगैरह खाए और उसको कहीं भी डाल दिया, ऐसे मत डालो। उसको स्थान पर डालो, कहीं डस्टबिन में डालोगे वो सही जगह हम डाल सके। और दूसरा ये है इसमें कि पुराने समय से हम अपने जब ये जूट के बैग वगैरह लेके चलते थे, कपड़े का थैला वगैरह, तो हमें अपने बुजुर्गों से यही सीखना चाहिए कि हाँ भाई जब उस समय में ये सब प्रचलित होया।
0: जी मैं आपसे यही बात करने वाली थी, आप अपने घर के जो छोटे हैं उन्हें समझाते हैं इस बारे में, उनसे बात करते हैं।
1: हाँ जी दीदी, आप पॉलिथीन वगैरह को, चलो आजकल पैकिंग वगैरह भी पॉलिथीन में ही आती है
0: जी, वो चलिए जो चीज हमारे हाथ में नहीं है फिलहाल, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है कि कम से कम बाजार से अगर हम सब्जी या फल फ्रूट या कुछ और चीजें लेने जा रहे हैं तो हम घर से थैला तो लेके जा सकते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल दीदी, थैला लेके जाओ अपना, ये पॉलिथीन वगैरह का प्रचलन बहुत कम हो जाएगा। तो हम
0: चलिए, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो चंडीगढ़। हेलो हेलो हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़
1: हेलो
0: जी
1: मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना।
1: मैं सूरज बात कर रहा हूँ मैम, तहसील टोक डिस्ट्रिक्ट शिमला एचपी से।
0: अच्छा सूरज जी, सूरज बात कर रहे हैं। अच्छा हमारे यहाँ तो आज सूरज है ही नहीं
1: जी, वो तो मैम याद ही नहीं है
0: आज तो बारिश हो रही है, सूरज देवता नहीं है आज तो। चलिए बड़ी अच्छी बात है, कम से कम कुछ ठंड का एहसास तो हुआ। अच्छा सूरज जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अरे ये तो सचमुच में सूरज ढल गए। हेलो हेलो, चलिए अगला कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़, हेलो जी जी, नाम बताएं अपना।
2: अरे नमस्कार जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: अरे हम जो वो सेवा तिवारी उत्तर प्रदेश
0: अपनी बात कहें अपनी बात।
2: हाँ तो दीदी आज के प्रोग्राम के आए, मैं तो वहाँ चंडीगढ़ में रही था लेकिन छुट्टी बाहर है वहाँ सेक्टर 9
0: जी। आपने ये बात की हमसे पिछले प्रोग्राम में, हमारा जो आज का विषय है उसके बारे में बात कीजिए।
2: हाँ आज का तुम्हें क्या है दीदी, क्योंकि यहाँ पे रेडियो पे आता ही नहीं है।
0: अच्छा। नहीं, आप हमारी ऐप पे सुन सकते हैं ना। आजकल तो जरूरी नहीं कि आपके पास रेडियो होगा तभी आप हमारे प्रोग्राम सुन पाएंगे। आजकल तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जिनसे आप रेडियो कहीं पे भी आसानी से सुन सकते हैं।
2: नहीं दीदी क्या है कि मोबाइल बड़ी वाली है कहीं लेकिन उसको चलाने को नहीं आता है तो उसमें।
0: अच्छा जी, तो ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं कि घर से जब आप खरीदारी के लिए जाते हैं ना तो अपना थैला लेकर जाना चाहिए, ठीक है?
2: हाँ ऐसा ये कि ये जो प्लास्टिक का होता है दीदी, इसमें बहुत गंद होता है। सही बात है कि थैला तो हमारे पास हमेशा रहता है, यहाँ गांव में हूँ तो थैला हमारे साइकिल पे रहता है।
0: चलिए बड़ी अच्छी बात है, अगर थैला आपके साइकिल पे रहता है इसका मतलब है कि आप जागरूक हैं। ऐसे ही करते रहिएगा, फोन करने के लिए धन्यवाद।
3: लाइव फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जी तो श्रोताओ, हम चाहते हैं कि आप भी घर से जब निकलें खरीदारी के लिए तो थैला ज़रूर लेकर जाएं, चाहे जूट का लेकर जाएं, चाहे आप कपड़े का थैला लेकर जाएं, और आपके घर में जो भी बच्चे हैं, छोटे युवा हैं, उन्हें आप ये ज़रूर समझाएं, तभी हम इस पर्यावरण को सुरक्षित भी रख पाएंगे और एक अच्छे से स्वच्छ वातावरण में सांस भी ले पाएंगे।

0: है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने सुहाने। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहरा फिल्म के गीत से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीतकार हैं विजू शाह।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। कार्यक्रम का अगला गीत अनाड़ी फिल्म से है। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

दिल तो पागल है। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

0: इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शेरो नगमा।

श्रोताओं की आज की इस महफिल में हाजिर है आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार। दोस्तों, ये मन पंछी भी बहुत चंचल है। जब भी इसका दिल करता है किसी उम्मीद रूपी शाख पर बैठ जाता है और ना जाने कितने ही सपने संजोने लगता है। खासतौर पर जब बारिश की फुहारें तन पर पड़ती हैं तो ऐसे मदहोश मौसम में अपने होने वाले मन के मीत के बारे में सोचने लगता है। वो कहाँ होगा, कौन होगा, कैसा होगा। चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जाते तुम ही तुम नजर आते हो।

और दोस्तों जब मन चाहा हम सफर मिल जाता है, जिसकी तलाश थी तो प्रीत का पहला नटखट सावन दिल में शोर मचा देता है। हर पल हर घड़ी उसी के ख्याल आने लगते हैं, मन में प्यार की बूंदों की बरसात होने लगती है। तुम्हारे नाम को होठों पे सजाया है मैंने, तुम्हारे नाम को होठों पे सजाया है मैंने, तुम्हारी रूह को अपनी रूह में बसाया है मैंने। दुनिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते हो जाए पागल, तुम्हें दिल के ऐसे कोने में बसाया है मैंने।

मस्त बरसात का मौसम, चारों तरफ हरियाली, बारिश की बूंदों से लहलहाते पत्तों के भी आपस में प्यार मोहब्बत की बातें, हर तरफ प्यार का मौसम। और बरसात के मौसम में यूं भीगना, पेड़ पौधों के साथ अटखेलियां करना और इंतजार अपने महबूब का कि इस प्यार भरे मौसम में उससे मुलाकात हो जाए। सुन लो अगर तो एक बात कहूं, सुन लो अगर तो एक बात कहूं, तेरे दिल को मैं अपनी कायनात कहूं, बसाकर तुम्हें अपने

भीगना, पेड़ पौधों के साथ अटखेलियां करना और इंतजार अपने महबूब का कि इस प्यार भरे मौसम में उससे मुलाकात हो जाए। सुन लो अगर तो एक बात कहूं, सुन लो अगर तो एक बात कहूं, तेरे दिल को मैं अपनी कायनात कहूं, बसाकर तुम्हें अपने जिस्मो जा में, मोहब्बत को मैं अपनी हयात कहूं।

बरसात के मौसम में हर तरफ हरियाली और ऐसे लगता है कि भीगे भीगे बरसात के मौसम में पेड़ पौधों की शाखाएं आपस में बातें करती हैं। मन अपने साथी को ढूंढने लगता है और पुकारता है, सोनी पड़ी है दिल की जमीन मुद्दतों से, बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, एक बार मिले तो यूं बरसे बादल कि फिर बार बार मिलने की फरियाद कीजिए।

इस नगमे के साथ ही आज का शेरो नगमा कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेरो नगमा। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।

0: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं बहुत सुनहरी सी यादें, और आज याद करने का दिन है गीता दत्त, अभिनेत्री गीता दत्त का, गायिका गीता दत्त का। आज पुण्यतिथि है उनकी। आज ही के दिन हम याद करेंगे अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को और अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है गीता दत्त ने।

0: हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यह गीत गीतादत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का यह गीत, गीता दत्त ने जिसे गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी

0: तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का, और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

0: हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनिया।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी, आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में, गुलजार के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं, येशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

0: देख।
1: हम सुन रहे थे सुनैना मूवी फिल्म का यह गीत, जिसे गाया यशोदास ने रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत, इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: और आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं पर समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए, नमस्कार.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल. यह कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे. क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से.
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर.
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन. अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध.
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें. हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846.
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच.
1: आकाशवाणी चंडीगढ़. FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं. लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण. अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार. पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में. प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में. कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर. 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर. कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे. कार्यक्रम सदाबहार नगमे सुनिए 2:30 पर. कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे.

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेहतनामा। आज इस कार्यक्रम में प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। शाम 5:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा पेश की जाएगी शाम 6:30 पर। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:35 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जयमाला। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे दिलीप सेन की लिखी हास्य नाटिका सुनिए पड़ोसी का नाता, निर्देशिका हैं कुमुद नागर। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर केंद्रित रहेगा।

और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय हो तो वो बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब दोनों सक्रिय और फायदेमंद होते हैं तो इससे देश का भला होता है और सभी जीवों का कल्याण होता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि मॉनसून सक्रिय और फायदेमंद बना रहेगा और मॉनसून सत्र भी फायदेमंद साबित होगा।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की पहचान और स्वीकार्यता बढ़ रही है। यह एक जबरदस्त संदेश है कि देश के युवाओं की क्षमता और उम्मीदें अंतरिक्ष की तरह ही असीम हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ एक महीने में देश ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, ऐसी कामयाबियां जिनसे हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे राष्ट्रीय मंच हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या अब अंतरिक्ष ही क्यों न हो, ये भारत के लिए सचमुच गर्व के पल रहे हैं।

0: उन्होंने कहा पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले एक भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था और कुछ दिन पहले ही एक युवा भारतीय स्टार्टअप ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा हाल ही में राजस्थान में देश को एक बड़ी तेल रिफाइनरी समर्पित की गई। श्री मोदी ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही देश को तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट समर्पित किया गया था।
1: पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई, एक सेमीकंडक्टर प्लांट देश को समर्पित किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है। लेकिन भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजिन वाली, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है।
0: श्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव ने भारत जैसे देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद और रसायनों को लेकर कई रुकावटें और संकट पैदा हुए। उन्होंने कहा इसके बावजूद भारत ने 7.7% की विकास दर बनाए रखी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। यह भारत की अंदरूनी ताकत को दिखाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से राज्य के सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ सीधा राज्य स्तरीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकारी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए सच नामक पोर्टल भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खंड स्तर पर सर्वोत्तम कार्य करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों को इनाम के तौर पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग स्कूल के विकास में किया जाएगा। इसमें सर्वोत्तम विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन सच पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को पेयजल का टैंक ठीक करवाने, टॉयलेट एवं दीवार की मरम्मत जैसे छोटे मोटे एवं आवश्यक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने की शक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त की स्वीकृति के बाद 25 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी विद्यालय प्रबंधन समिति को शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी बताया और समिति के सदस्यों को सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान किया। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है जिससे उमस भरे मौसम से राहत मिली है। हरियाणा में कालका, पंचकुला, अंबाला और जगाधरी में मूसलाधार बारिश होने की खबर है। चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल 21 जुलाई को ज्यादातर जगहों पर और 22 से 23 जुलाई तक कई जगहों पर और बारिश होने की संभावना है। 20 से 22 तारीख के बीच कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा 24 और 25 तारीख को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2026-27 के तहत 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भावें यह मानसून होवे जां मानसून इजलास दोवें सरगर्म होण तां बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुंदे ने। संसद दे मानसून इजलास तो पहला पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री मोदी ने कहा कि जदों दोवें उत्पादक हुंदे ने तां इह राष्ट्र दी भलाई अते सारे जीवां दी खुशी ते शांति नूं यकीनी बणाउंदा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहर कीती कि मानसून सरगर्म ते उत्पादक रहेगा ते मानसून इजलास भी उत्पादक साबित होवेगा।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय पेंडू रोजगार गारंटी एक्ट तो नवी लागू की गई रोजगार ते आजीविका मिशन लई विकसित भारत गारंटी योजना विच सुचारू तब्दीली नूं यकीनी बनाउण लई व्यापक प्रबंध कीते ने। पेंडू कामिआं लई रोजगार दे मौके सुरक्षित किए गए हैं ते सूबे च विकास कारजां नूं सुचारू ढंग नाल

0: चलाउन नूं वी यकीनी बनाया गया। 1 जुलाई तो पंजाब च लागू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत तनखाहां लई 50 करोड़ रुपए की मंजूर राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। पंजाब के पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सौन ने बीते दिन कहा कि वैध मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाले सारे लाभपात्रियों अपने आप बीबी जी राम जी अधीन रोजगार मिलता रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवे लाभपात्री भी इस योजना के तहत नाम दर्ज करवा सकते हैं, जिन्हों लिए अज तो हरेक ग्राम पंचायत विच नवे कामयां रजिस्टर्ड करन दे नाल नाल मौजूदा लाभपात्रियों के वेरवियां भी अपडेट करने लई जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। पंजाब विच कल हुई फार्मासिस्ट अफसर भर्ती परीक्षा दौरान एक वड्डे हाईटेक अंतरराज्जी धोखाधड़ी के घोटाले का पर्दाफाश होया। पंजाब पुलिस ते इसके काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने 3 जिलों फरीदकोट, कोटकपुरा ते फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रां ते तेजी नाल तालमेल वाली कार्रवाई करते हुए संगठित धोखाधड़ी नैटवर्क का पर्दाफाश किया। 7 मुख साजिशकारां नूं गिरफ्तार किया गया। इसे दे तौर ते धोखाधड़ी विच शामिल 28 उम्मीदवारां नूं भी हिरासत विच लै लिया गया। पुलिस सूत्रां दे हवाले नाल जलंधर तों साडे पत्रकार ने दस्सिया कि पुलिस ने धोखाधड़ी लई वरते गए पेन कैमरों के नाल नाल 27 बैटरी संचालित वायरलैस धोखाधड़ी यंत्र भी बरामद किए ने। यह परीक्षा उलंघना शुरू होने तो बाद पूरी तरह असल समय विच हुई जांच करने वाले ने स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्र पहला तो लीक नहीं होया सी अते हुण तक किसी भी अधिकारत अधिकारी की शमूलियत नहीं मिली है। हालांकि मुढ़ली जांच तो पता चले कि सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड फाजिलका के संत कबीर पोलोटैक्निकल कॉलेज का एक कर्मचारी गुरमीत सिंह है। यह 7 मुख साजिशकार पेन कैमरा स्कैनर राही वट्सएप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने तो तुरंत बाद पंजाब हरियाणा राजस्थान तो काम कर लगे तो इन्होंने लखा रुपए विच अदायगी करने वाले विद्यार्थियों सवालों के जवाब भेजने शुरू कर दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार का ऐलान किया। बीती शाम हुशियारपुर के तलवाड़ा तो एक शाम भगवान शिव के नाम प्रोग्राम दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त महीने तो पंजाब सरकार खाटू श्याम जी सालासर हरिद्वार ऋषिकेश से मथुरा वृंदावन लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा शुरू करेगी। इन तिन्ने नवे रूटा की रजिस्ट्रेशन अगस्त में खुलेगी, जिस तहत सरकार करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं दर्शन करवाने की तैयारी कर रही है। पंजाब सरकार ने आम लोगों की सहूलत लई जमीन ते जायदाद की खरीद वेच समय रजिस्ट्रेशन की भाषा नूं होर सौखा बनाउण लई एक अहम कदम चुकिया है। सरकार ने माल विभाग विच मुद्दतां तों वरते जांदे 35 औखे शब्दां दी थां सौखे ते आम लोगों की समझ विच आउण वाले पंजाबी शब्द वरतण दा फैसला कीता है। पंजाब के माल मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्सिया कि सरकार दा उद्देश सरकारी सेवावां नूं लोगों लई वधेरे सरल, पारदर्शी ते सुखाला बनाउणा है। उन्होंने दस्सिया कि जायदाद की रजिस्ट्रेशन नाल संबंधित दस्तावेजों में वरती जाती औखी भाषा कारण आम लोगों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी। उन्होंने कहा कि इस बारे माल ते मुड़ वसेबा विभाग वालों विशेष कमेटी कायम की गई सी, जिस दी सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया गया। पंजाब ते हरियाणा के कई हिस्सों में भारी तो बेहद भारी बारिश हो रही है, जिस नाल गर्मी ते हुमस भरे मौसम तो राहत मिली है। मौसम विभाग ने दोवां सूबे च मौजूदा मौसम की स्थिति बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया हो। सब तो वध प्रभावित जिले गुरदासपुर, पठानकोट, हुशियारपुर, रूपनगर, मोहाली ते आनंदपुर साहब ने। जलंधर, अमृतसर ते होर जिले दे कुछ हिस्सों च भी दरमियानी बारिश हो रही है। मोहाली समेत कुछ जिले च मीह दा पानी भर जाण नाल मुसाफरां नूं परेशानी का सामना करना पै रहा है। उधर हरियाणा च कालका, पंचकूला, अंबाला ते जगाधरी विच भी भारी बारिश हो रही है। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म होईयां। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर 1:40। नमस्कार।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 01846, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172
2: और हमारा

0: ईमेल आईडी है akashvanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अनजाना फिल्म के गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं धनवान फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुदरत फिल्म में किशोर कुमार को। गीत को लिखा है मजरूह ने, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: कुदरत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्ता लागू।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर। और पाइल्स
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है। हाँ, अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी जरूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन है जो फ्लोरिडा अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूम कर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके बच्चे छोटे थे तब वो NGC में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए तो बच्चों के साथ सास ससुर देवरनंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई, तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है।

दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी, जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, विदेश में खाने पीने की समस्या होती है। अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहाँ पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है, इस चीज़ के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, जरूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूं और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है। सुरेश वाडकर और बेला की आवाज में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है। बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी, आप सबने सही पहचाना, हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे। ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीज़ें भी तो नई नई मिलती है ना, कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से

में एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो।

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत, हरिहरन सुरेश वाडकर, विनोद सहगल और केके की आवाज में, गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है, हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं।

0: चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है। दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है। यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे कौशोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है। किसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ रोज़ रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें प्रदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारी श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात या कहीं हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुंह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

और इसी के साथ हमारे घर श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहां है, जहां की मिट्टी वहां से खान पान, वहां से गोली, और वहां अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, बहुत मजबूत होता है वो इंसान।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। कुछ पाने

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:00 चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के

0: प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
0: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश

0: सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के

0: कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने, नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: जज्बात की नरम छाव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत, जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहनें या दो वर्मा सखियां साथ में हैं।
1: क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम वाकई बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: बारिश के मौसम कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी,
2: इसे चाट

0: पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का, लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
0: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौकों पर बनाई जाती है या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है, और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
0: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
1: बिल्कुल,
0: उम्र होती है और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथी ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत 2 महीने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये। तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
5: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
4: आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
5: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी।
4: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
4: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा है कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
5: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को।

0: मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढाकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं बस।
1: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
2: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है तो वक्त निकालना पड़ा।
1: रूप कुमारी ने बात बनाई।
0: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
2: जी
0: जी।
1: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
2: ये घर दीदी इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी है?
1: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
0: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
1: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
2: मुझे तो इस घर में ऐसे घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में। सुन रहे हैं आप दीदी?
0: सुन रही।
2: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ?
1: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देख कर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
2: दीदी आपके लिए मेरी जान हाजिर है, दीदी आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ, मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है, मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं, हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, बड़े बड़े अफसरों से मेरा

0: यारा ना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी एक मिनट, ये
1: क्या
0: ये
1: है?
0: थोड़े से रुपए।
1: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। इतने रुपए?
0: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए, जो ईमान और उसूल के उपासक हैं उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, हैं? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हाँ, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग। दीदी अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
2: उमानाथ ने आगे कहा, अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरगीबे कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
1: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए

0: तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
1: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
2: सुनो यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
1: रूप कुमारी ने उसके तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
0: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
2: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
0: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
2: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
0: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
2: मगर एक बात तो है।
0: क्या?
2: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
0: हाँ यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
2: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था, मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
0: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
2: हाँ ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
0: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए, मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
2: नहीं वो तो अपनी कार पर थे।
1: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
0: सुनो तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
3: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी यानी बारिश की कुछ बातें. बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा. किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है.
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है. किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती. फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते. जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सके.
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने.
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया. तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है. बारिश का पानी जो है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के

0: इतने बड़े फायदेमंद होते हैं, तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
1: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भरकर लेकर आते हैं और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है। तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
1: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
0: बिल्कुल, और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद ले लेती थी,
1: बारिश में भीगने का आनंद भी मिल जाता था। और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता,
0: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना तो डोर मैट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ पड़ के इनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है और जैव विविधता को सहारा देता है।
1: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें, जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
0: हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
1: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं, महानगरों में जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
0: बिल्कुल, और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है और गांव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की। बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है। कण में जो जल और उसका स्तर सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है, बारिश का वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी के साथ

0: संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है। बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है। उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात करें कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी से बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती है, वो एक अलग चीज। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारी सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं। कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको कह सकते कि भाई आप इस पर आप अपना है, मेरा सुन के ना अपना जो उन्होंने लिखा वो अपनी यादें लिखी हैं।
0: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: ओ तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: होठ

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात करेंगे।
5: तो पिन्नी जो है ना पंजाब का जो व्यंजन है ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा मैदा किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, इसके बाद पानी को छान

0: कर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आंच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दे और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए एक गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम सर्व कीजिए।
0: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: हूँ। तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक AISSMS पुणे।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
2: वापस वही परेशानी तो नहीं होती है?
3: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल, 5 साल, अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करने की, वेट कम करना
2: जी,
3: रेगुलर एक्सरसाइजेस करना
2: जी जी,
3: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि अगर मसल सी वीक होने लगे वापस, तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है
2: जी।
3: सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं
2: जी। तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये

0: स्थिति ना आए लीकेज वाली।
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
0: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है
0: जी। और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं
0: जी।
1: ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है
0: जी, जी।
1: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है, ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है
0: जी।
1: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए
0: जी। बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
1: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है
0: जी हाँ,
1: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता
0: जी,
1: है
0: जी जी।
1: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
0: जी।
1: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
0: जी, जी।
1: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं
0: जी।
1: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं
0: जी।
1: सो इन शॉर्ट ये सब

0: प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए। अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: मान लेना कि नहीं अब इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है
1: जी।
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है
1: जी।
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी,
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है
1: जी।
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं, क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है।
0: एब्सोल्यूटली,
1: कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
0: और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई
1: तो,
0: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार?
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है। दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मुहे रंग दो लाल।
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है
0: जी।
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी।
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना
0: जी,
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं
0: जी जी।
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है
0: जी।
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे उसमें कुछ निकलेगा हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा
0: इसलिए मत चेकअप कराओ, इसलिए
1: चेकअप मत करवाओ
0: जी जी।
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली

0: स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है. कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है. लेकिन महत्व का ये, हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है. क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है, लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं. सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है. उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है. आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है. सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं. लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है. अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है. दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का. क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं. क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं. सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है. तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज. क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है. सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं. सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर. और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सके कि आप ये लीजिए, आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा. ये गलत बात है. इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है. तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें. आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है. क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है. अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा.
1: बिल्कुल.
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो. ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है. हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है. लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं. सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है. कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है. एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है. ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है. और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है. लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है. सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है.
1: जी तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा. तो
0: सो एक

0: मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
1: बिल्कुल।
0: एट द सेम टाइम एवरीपैथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक, बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है। बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है। ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है।
1: बिल्कुल।
0: सो इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: जी, इस तरह की बीमारियां जो होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं, और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है, जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट।
1: जी,
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
1: जी, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने।
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका

0: नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं, क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी जी
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी जी
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
2: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: जी।
2: सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
1: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
2: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
1: जी हाँ।
2: और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा,

0: बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट. सो रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है. महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है
1: जी.
0: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है
1: जी.
0: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है
1: जी.
0: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है. सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है. इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है.
1: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है. इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं. फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफ़ी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज़्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है. सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की ज़रूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है.
1: जी बिल्कुल. और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए.
0: काफ़ी चीज़ें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है. जैसे काफ़ी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप. कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है. अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफ़ी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है. प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है. पहले दवाइयाँ नहीं थी, अभी दवाइयाँ से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं. सो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
1: जी बिल्कुल.
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी.
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है.
1: जी, जी.
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है. सो ये बहुत महत्व की बात है. सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है. लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं.
1: जी सही बात है. प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है?
0: आई थिंक बहुत महत्व की बात आपने कही है.
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल. कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है.
1: जी जी.
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती. और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है.
1: अच्छा.
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है. लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं. ज़्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है.
1: जी.
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथ

0: ही निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोनल इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफ़ी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
1: चंचल चितवन,
0: चंचल चितवन
1: बेहतरीन
0: गाना, अच्छा
1: है।
0: गाना है
1: जी, मुकेश की आवाज में भी है,
0: आवाज में लता जी की आवाज में भी है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे,
1: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: सो जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह के किडनी ऑब्स्ट्रक्ट

0: हो के अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है
1: जी।
0: सो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इज़ अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन आवर बॉडी।
1: जी जी।
0: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटाशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
1: जी जी।
0: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
1: जी।
0: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
1: जी।
0: लेकिन यहाँ कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज है जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है।
1: जी जी।
0: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
1: जी जी।
0: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
1: बिल्कुल।
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
1: जी।
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: जी, जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी।
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे।

0: और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज़्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है।
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी, जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह

0: ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसफर, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी जी
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफ़ी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत ज़रूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी,
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
1: जी जी,
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो लोगों को पता नहीं है लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन, यहाँ दो तीन चीज़ें हैं। ऑफकोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज़ अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफ़ी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर
0: absolutely,
1: समय पर।
0: absolutely.
1: तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज़, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: वृद्धि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज़्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफ़ी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है, अगेन राइट टाइम में डिटेक्शन होना ज़रूरी है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती हैं, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए आप एक्सपर्ट को पूछिए।
1: जी।
0: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, लेकिन ये बहुत महत्व की चीज़ है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है।
1: जी।
0: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो। और आज के ज़माने में जहाँ इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 and 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं जानता हूँ कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप। आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम।
1: जी,
0: थैंक यू वेरी मच।
1: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि

107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार लेके जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की मिली जुली आवाजों में त्रिदेव फिल्म का ये गाना।

लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और सपना मुखर्जी की आवाजों में यलगार फिल्म का ये गाना। संगीत है चंडी सिंह का और बोल हैं सुदर्शन के।

आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरोला की आवाजों में सोल्जर फिल्म का ये गाना। बोल है समीर के और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोता अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है

0: इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त।

0: और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दूं?
1: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
7: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: ये हंस कैसे बताएगा?
10: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने

0: पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद

उपनिषद से तत्त्वम असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

0: उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।
1: वत्स श्वेत केतु,
2: आज्ञा दत्त,
1: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
2: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: कि वो विद्यमान है।
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स, जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात, क्या तुम जानते हो
0: हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं
1: तो हम कैसे जान

0: राह पलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वनियंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही बोलो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोप की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनोव में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को

0: देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz से यह आकाशवाणी है। तो सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ई रिक्शा खरीद को अनुमति प्रदान की। गुरुग्राम के गांव बसई में 1000 मेगालीटर प्रतिदिन क्षमता का दूसरा जलघर बनाने के लिए स्वीकृति मिली। हरियाणा के नूह जिले के 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। हरियाणा में उच्च गुणवत्ता के फ्रोजन सीमन के सुरक्षित भंडारण हेतु तरल नाइट्रोजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए दर अनुबंध को मंजूरी दी गई। और मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई। 22 जुलाई तक बारिश का दौर चरम पर पहुंचने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ई रिक्शा खरीद को अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कैथल शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 12 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण में 10 मेगालीटर प्रतिदिन क्षमता के 5 रेनीवेल ट्यूबवेल लगाए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की। गांव मंझावली मोठुका के आसपास यमुना नदी के जलभराव वाले क्षेत्रों में लगने वाले इन रेनीवेल ट्यूबवेल पर लगभग 164 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के गांव बसई में 1000 मेगालीटर प्रतिदिन क्षमता का दूसरा जलघर बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके निर्माण पर लगभग 149 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी। योजना अनुसार 1000 तक पशु रखने वाली गौशालाओं को एक तथा इससे अधिक गायों को रखने वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि खेदर में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र को अपग्रेड करने एवं RCC टैंक का निर्माण करने की भी मंजूरी दी गई है। इस कार्य पर लगभग 27 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जालंधर के नकोदर में अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के दरबार में आयोजित 43वें वार्षिक 3 दिवसीय मेले को संबोधित किया। इस अवसर पर अलमस्त बापू लाल बादशाह दरगाह के गद्दी नशीन श्री हंस राज हंस भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का जीवन प्रेम, भाईचारे, मानवता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है।
1: बापू लाल बादशाह जी, इन्होंने प्रेम, प्यार, एकजुटता का रास्ता सानू दिखाया है। उन्होंने कहा कि असी वो प्रेम की मूर्त है और जब प्रेम होता है तो साथियों उत्थे कोई द्वेष भावना नहीं होती है। ये बापू लाल बादशाह से जीवन से सीखने को मिलता है। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि आज इस पवित्र स्थल से शीश नवाण का मैं मौका मिले। मैं पूरी टीम का और विशेष तौर से हंसराज हंस जी का मैं दिलो धन्यवाद करता कि आज मैं इतने आप सब के बीच आने का मौका मिला है।
0: पंजाब और हरियाणा को लेकर श्री हंस राज हंस से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विरासत, गुरु परंपरा और सामाजिक संबंध एक जैसे हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और वंचितों के लाभ के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री ने पंजाब की तरक्की की भी कामना की।
1: जिथे हरियाणा आगे बढ़ रहा है, पंजाब भी साडा पीछे ना रहे, पंजाब भी उससे ज्यादा गति दे नाल आगे बढ़े, ये साडी सोच है। और ये सोच मैं इत्थे बापू लाल बादशाह जी ने इस पवित्र स्थल ते लेकर के आया कि साडा पंजाब जेड़ा देश का नंबर एक का सूबा सी, वो नंबर एक का सूबा बनो। उदे लई बापू लाल बादशाह जी दे चरणा दे विच निवेदन करना आया सी।

इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। जिन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा उनमें लोहिंगा कला, चंदेनी तथा शाहचोखा शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित होने से आसपास के हजारों ग्रामीण नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा उपचार के लिए दूर के अस्पतालों पर उनकी निर्भरता कम होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज चंडीगढ़ में हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग की उच्च स्तरीय खरीद समिति की पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में उच्च गुणवत्ता के फ्रोजन सीमन के सुरक्षित भंडारण हेतु तरल नाइट्रोजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए अगले दो वर्ष के लिए दर अनुबंध की मंजूरी दी गई। पशुपालन मंत्री ने बताया कि पशुधन के आनुवांशिक सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इससे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तरल नाइट्रोजन की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि तरल नाइट्रोजन की निर्बाध उपलब्धता से राज्य में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों को गति मिलेगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को होगा। मौसम विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय ने कहा है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार बारिश का दौर 20 से 22 जुलाई के बीच अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक बारिश होगी। इस दौरान हालांकि कुछ जगह बारिश हल्की से मध्यम रहेगी, वहीं पंजाब और हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी 12 सेमी से अधिक बारिश होने की संभावना है। उनके इस दौर को देखते हुए उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 23 तारीख को भी कई जगहों पर और उसके बाद कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के गांव फिरोजपुर में गौशाला का शिलान्यास किया। श्री गौरव गौतम ने कहा कि गौशाला का निर्माण केवल एक भवन का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सेवा, संवेदनशीलता और गौ संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस गौशाला के निर्माण से गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, उनके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण समाज को भी इसका व्यापक लाभ प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित गांधीनगर क्षेत्र में लगातार हो रहे सीवर ओवरफ्लो के कारण लोग परेशान हैं। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो गए हैं। वार्ड पार्षद कमल किशोर ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से सरकार की छवि खराब हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कार्रवाई कर सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। रोजगार विभाग फरीदाबाद जिले में 21 से 24 जुलाई तक व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को उनकी योग्यता, रुचि तथा बदलते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप करियर चुनने के लिए सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में 22 जुलाई को बल्लभगढ़ उपमंडल रोजगार कार्यालय की ओर से चंदावली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़खल की सहायक रोजगार अधिकारी डॉ. नेहा सिंह मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी देंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ई रिक्शा खरीद को अनुमति प्रदान की। गुरुग्राम के गांव बसई में 1000 मेगालीटर प्रतिदिन क्षमता का दूसरा जलघर बनाने के लिए स्वीकृति मिली। हरियाणा के नूह जिले के 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। हरियाणा में उच्च गुणवत्ता के फ्रोजन सीमन के सुरक्षित भंडारण हेतु तरल नाइट्रोजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए दर अनुबंध को मंजूरी दी गई और मौसम विभाग ने

अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई। 22 जुलाई तक बारिश का दौर चरम पर पहुंचने की उम्मीद। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: छठी करो यार, प्लीज छठी करो।
1: 2000 कोई मैच है?
0: यही समझ लिया यार, लेके जाना है दादाजी नु लेके।
1: हां यार, पर वो जानती है तारा ना लेना ही पैंदा है। पर बैंकिंग विच नहीं।
2: भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सब तो पहला। जे तुसी 70 साल तो ऊपर हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, तो तुसी बैंक नहीं जा सकते, तब बैंक आवेगा तुम्हारे को जरूरी सेवाएं लेके, वो भी वाजिब दरां पे।
3: सीनियर सब तो पहला। आरबीआई कहता है जानकार बनो, सचेत रहो।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। संसद दे मानसून अजलास दे पहले दिन नीट परीक्षा पेपर लीक नूं लैके विरोधी धिर दे विरोध प्रदर्शन दौरान दोनों सदनां दी कारवाई कल तक लई मुलतवी कीती गई। चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन वल्लों इक हफ्ता भर चलण वाले कारगिल विजय दिवस समारोह की शुरुआत। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नौजवानों नूं हथियारबंद सेनावां दी हिम्मत तों प्रेरणा लैण दी अपील कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बीते दिन शुरू की गई अमृतसर वाराणसी एक्सप्रेस रेलगड्डी ने कल तो हफ्ते च तीन बार अपनी नियमित सेवा शुरू की। पंजाब पुलिस वालों सूबे च हुई फार्मासिस्ट अफसर भर्ती प्रीख्या दौरान एक वड्डे हाईटेक अंतरराजी धोखाधड़ी के घोटाले का पर्दाफाश। 7 प्रमुख साजिशकारा 28 उम्मीदवारों किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने पंजाब के हरियाणा में भारी मीह पैण बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली और आनंदपुर साहब सब तो वध प्रभावित हुए। संसद के मानसून अजलास के पहले दिन नीट परीक्षा पेपर लीक नूं लैके विरोधी धिर के विरोध प्रदर्शन दौरान कई बार मुलतवी किए जाने तों बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई। अज सवेरे जदों लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुई तां मैंबरां ने अपने 6 सबका साथियों नूं श्रद्धांजलि भेंट की, जिन्हां दा हाल ही च देहांत हो गया सी। लोक सभा विच प्रश्नकाल शुरू हुंदिया ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विरोधी धिर दे मैंबरां ने नीट परीक्षा पेपर लीक दा मुद्दा उठाया। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने विरोधी धिर नूं सदन की कार्रवाई चलन देण अते सदन की मर्यादा बनाई रखण की अपील की। हालांकि विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों हंगामा जारी रहा ते रौले रप्पे कारण सदन की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा के उप सभापति हरवंश ने निर्धारित एजेंडे नाल अगे वधन की कोशिश की, पर विरोधी धिर दे मैंबरां ने नारेबाजी करके अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा ते हंगामे विचकार राज्यसभा नूं भी कल तक लई मुलतवी कर दिता गया। चंडीगढ़ सिटीजन्स फाउंडेशन 1999 दी कारगिल जंग विच भारत दी जित प्राप्त करने वाले जवानों दी हिम्मत, कुर्बानी ते देशभक्ति दा सम्मान करने लई एक हफ्ता भर चलण वाला कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित कर रहे। अज चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर विखे प्रोग्राम दा उद्घाटन करदिआं पंजाब दे राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत दी हिम्मत, राष्ट्र स्वाभिमान, देश दे जवानों दी सर्वोच्च कुर्बानी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमेशा सब तो चुनौतीपूर्ण हालात विच अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा लिए हथियारबंद सेनावां दा ऋणी रहेगा।
5: और मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा उस समय उस कारगिल की विजय यात्रा में जिन लोगों का भी सहयोग, बलिदान और संघर्ष रहा, उसको देश याद करे, उसको नमन करे और उससे प्रेरणा लेकर के मतलब भविष्य में भी भारत के हर काम में हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह प्रयास करे, क्योंकि देश का मान के साथ ही हमारा मान है।
4: उन्होंने कहा कि कारगिल नायकां, वीर नारियां ते शहीदां दे परिवारां नूं सन्मानित करना बहुत माण दी गल है। उन्होंने कहा कि जवानां नूं उन्हां दे जंग समें दे तजर्बें नूं सुन के हर भारती नूं माण महसूस हुंदा है। दहशतगर्दी अते हमले खिलाफ भारत दे दृढ़ इरादे नूं दोहरांदे हुए राज्यपाल ने कहा कि देश शांति चाहुंदा है पर अपनी प्रभुसत्ता अते खेतरी अखंडता लई किसी भी खतरे दा हमेशा फैसला कौन जवाब देगा। उन्होंने नौजवानों को हथियारबंद सेनावां की हिम्मत और अनुशासन तो प्रेरणा लैन ते राष्ट्रीय एकता, अखंडता ते निस्वार्थ सेवा प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करने की अपील की। साबका सेना मुखी जनरल वेद प्रकाश मलिक जिन्हां की अगुवाई च कारगिल जंग लड़ी गई और जीती गई विशेष मेहमान सन। कारगिल जंग के नायक परमवीर चक्कर नाल सम्मानित सेवामुक्त कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, मरणोपरांत परमवीर चक्कर नाल सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, सेवामुक्त लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के परिवार, कई वीर नारियां ते सीनियर फौजी साबका सैनिकां नूं राष्ट्रपति उन्हां दी शानदार सेवा लई नवासिया गया। कारगिल जंग ते एक दस्तावेजी ते वीडियो क्लिप भी दिखाई गई ते सेवामुक्त

तक श्रद्धांजलि भेंट की थी। कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई मनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर अनंतता मित्रा ने वोटर सूचिया की विशेष तीव्र सोध एसआईआर 2026 के चल रहे घर घर गणना गेट दौरान निर्धारित समय तो पहला गणना फार्मा की 100% डिजिटाइजेशन का टीचा हासिल करने लिए जिला संगरूर के दिड़बा जिला मोगा के निहाल सिंह वाला विधानसभा हल्कों के चुनाव मुहिम वधाई दी है। जिला चुनाव अधिकारियों ईआरओज बीएलओज के सांझे उपराले की शलाघा करदिया श्रीमित मित्रा ने कहा कि यह अहम उपलब्धि उन्होंने लगन के मिशन मुच उन्होंने कार्य कुशलता दर्शाती है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-EIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बीती 17 जुलाई में अपने जलंधर दौरे दौरान शुरू की गई अमृतसर छेहरटा वाराणसी छेहरटा सीर गोवर्धन वाराणसी एक्सप्रेस रेलगड्डी ने कल तो हफ्ते में तीन बार अपनी नियमित सेवा शुरू कर दी है। वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर श्री गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है। पंजाब उत्तर प्रदेश के भारत के दो सब तो सत्कार अध्यात्मक सभ्याचारक केंद्र अमृतसर से वाराणसी में सीधा जुड़न वाली यह रेलगड्डी हर बुधवार शुक्रवार एतवार दोपहर 2:05 छेहरटा तो अपनी यात्रा शुरू करेगी। 22 घंटे की यात्रा पूरी करने तो बाद वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी तो हर वीरवार शनिवार सोमवार वापसी यात्रा से यह रेलगड्डी शाम 5:50 शुरू होगी। 21 घंटे की यात्रा के समय तो बाद शाम 5:10 छेहरटा पहुंचे। इस रेलगड्डी में कुल 10 डब्बे ने जिन्हों में 6 जनरल सैकेंड क्लास 7 स्लीपर क्लास 2 एसी 3 टीयर ते 1 एसी 2 टीयर डब्बे शामिल ने। इस समय रेलगड्डी के चलन नाल पंजाब ते उत्तर प्रदेश खास करके वाराणसी दरमियान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं विद्यार्थियों कारोबारियों ते होर मुसाफरों लई सुविधाजनक सुरक्षित आरामदायक रेल सेवा उपलब्ध होगी। उधर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने माल टू आटो आई में एक होर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करदे पहली बार अमृतसर रेलवे स्टेशन तो सेवा और लुधियाना रेलवे स्टेशन तो आंब लोड किए गए ने। डिवीजन के निरंतर उपराले तो व्यापारियों बेहतर तालमेल ने जल्द खराब होने वाले इन फलों की रेल आवाजाई काफी उत्साहित किया। सीनियर डिवीजन कमर्शियल मैनेजर परमदीप सिंह सैनी ने दसिया कि 19 जुलाई में जम्मू कश्मीर तो सेवा के 97 डब्बे अमृतसर तो कटिहार भेजे गए सन जबकि 18 जुलाई में सहारनपुर तो अम्बा के 101 डब्बे लुधियाना तो हावड़ा भेजे गए ने। एक विशेष जांच टीम एसआईटी ने अज चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो साल 2015 के बैबल कलां ते कोटकपुरा बेअदबी नाल संबंधित गोलीबारी मामलों के संबंध में पूछगिछ की। उन्होंने बेअदबी मामलों नाल जुड़िया गोलीबारी घटनावां की जांच कर रही एसआईटी ने तलब किया। श्री बादल ने पूछगिछ के वेरवे देने तो इनकार करते हुए कहा कि चौथी बार है जब उन्होंने एसआईटी ने तलब किया है और जो भी बुलाया जाता है वह जांच में शामिल होते हैं। पंजाब कल भी फार्मासिस्ट अफसर भर्ती प्रीख्या दौरान एक वड्डे हाईटेक अंतरराज्जी धोखाधड़ी के घोटाले का पर्दाफाश होया। पंजाब पुलिस ते इसके काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने 3 जिलों फरीदकोट कोटकपुरा ते फिरोजपुर के 25 प्रीख्या केंद्रां ते तेजी नाल तालमेल वाली कार्रवाई करदिया संगठित धोखाधड़ी नैटवर्क का पर्दाफाश किया। 7 मुख साजिशकारां नूं गिरफ्तार किया गया ते सीधे तौर ते धोखाधड़ी च शामिल 28 उम्मीदवारां नूं वी हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के हवाले नाल जलंधर तो साढ़े पत्रकार ने दसिया कि पुलिस ने धोखाधड़ी लई वरते गए पेन कैमरिया के नालों नाल 27 बैटरी संचालित वायरलैस धोखाधड़ी उपकरण भी बरामद किए ने। यह उल्लंघना प्रीख्या शुरू होने तो बाद पूरी तरह असल समय च हुई। जांच करने वाले ने स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्र पहला तो लीक नहीं होया सी ते हुण तक किसी भी अधिकारी अधिकारी की शमूलियत नहीं मिली। हालांकि मुढ़ली जांच तो पता चल रहा है कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड फाजिलका के संत कबीर पॉलीटेक्निकल कॉलेज का एक कर्मचारी गुरमीत सिंह है। यह 7 मुख साजिशकार पैन कैमरा स्कैनर राही वट्सएप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने तो तुरंत बाद पंजाब हरियाणा और राजस्थान तो काम करने लगे ते उन्होंने लखां रुपए में अदायगी करने वाले विद्यार्थियों सवालों के जवाब भेजने शुरू कर दिए। पंजाब अते हरियाणा के कई हिस्सों में अज भारी तो बहुत भारी बारिश हुई जिस नाल गर्मी ते हुमस भरे मौसम तो राहत मिली है। मौसम विभाग ने दोनों सूबों मौजूदा मौसम की स्थिति बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पंजाब के सब तो वध प्रभावित जिले गुरदासपुर पठानकोट हुशियारपुर रूपनगर मोहाली ते आनंदपुर साहब जलंधर अमृतसर ते होरनां जिलों के कुछ हिस्सों में भी दरमियानी बारिश हुई है। मोहाली समेत कुछ जिलों में पानी भर जाने नाल मुसाफरों नूं परेशानी का सामना करना पिया। उधर हरियाणा में कालका पंचकूला अंबाला ते जगाधरी च भी बारिश हुई। पंजाब च फरीदकोट 41.9 डिग्री सैलसीयस हरियाणा च सिरसा 37.3 डिग्री सैलसीयस ते चंडीगढ़ च 29.4 डिग्री सैलसीयस नाल सब तो गर्म शहर रहे। ते आखर च खास खबर एक बार फिर तो संसद के मानसून इजलास के पहले दिन नीट प्रीख्या

0: ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 7:30। ਨਮਸਕਾਰ। ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ।
1: प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। भारत तेजी से आधुनिक, आत्मनिर्भर और हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में हाल के वर्षों में हुए परिवर्तन देश की विकास यात्रा को नई गति दे रहे हैं। इसी क्रम में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन नमो ग्रीन रेल का शुभारंभ देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही हरियाणा में आधुनिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तथा 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें परिवहन के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक का नया अध्याय है। भारत में इस तकनीक के सफल संचालन के साथ हमारा देश दुनिया का 6ठा ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने अपने रेल नेटवर्क पर 0 उत्सर्जन आधारित हाइड्रोजन ट्रेन उतारी है। इससे भारत जर्मनी, अमेरिका, जापान और चीन जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारत की नमो ग्रीन रेल कई दृष्टियों से विश्व में विशेष स्थान रखती है। जहां अधिकांश विदेशी हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 डिब्बों वाली हैं और लगभग 300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती हैं, वहीं भारत की यह ट्रेन 10 डिब्बों के साथ लगभग 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इसमें 3200 हार्स पावर की शक्तिशाली प्रणोदन तंत्र लगाया गया है जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल हो गई है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका पर्यावरण संरक्षण है। यह ट्रेन न तो डीजल की तरह धुआं छोड़ती है और न ही ओवरहेड बिजली लाइनों पर निर्भर रहती है। ट्रेन की छत पर लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और वायुमंडल की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। इसी बिजली से ट्रेन चलती है और उप उत्पाद के रूप में केवल पानी और जल वाष्प निकलते हैं। इस प्रकार यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को लगभग समाप्त कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के माध्यम से उन ऐतिहासिक और पर्वतीय रेल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी पहल की है जहां पूर्ण विद्युतीकरण कठिन या अत्यधिक खर्चीला है। यह परियोजना भविष्य में देश के अनेक महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर हरित ऊर्जा आधारित परिवहन का मार्ग प्रशस्त करेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड का चयन किया गया। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए विशेष उत्पादन संयंत्र, भंडारण टैंक, कंप्रेसर तथा रिफ्यूलिंग स्टेशन का भी प्रबंध किया गया है। जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला एकीकृत हाइड्रोजन रेलवे इकोसिस्टम विकसित किया गया है। यहीं पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन, उसका संपीड़न और सुरक्षित रिफ्यूलिंग की संपूर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जींद से इस ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना केवल एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 1149 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। जींद जंक्शन और नरवाना रेलवे स्टेशन का लगभग 25-25 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने जींद दौरे के दौरान कुरुक्षेत्र के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन तथा देश के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन किया। लगभग 447 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5.9 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड ट्रैक थानेसर शहर के बीचों बीच बनाया गया है। इसके निर्माण से 5 प्रमुख रेलवे फाटक समाप्त हो गए हैं जिससे वर्षों से लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से नागरिकों को स्थायी राहत मिली है। कुरुक्षेत्र में यह आधुनिक रेलवे अवसंरचना पर्यटन को भी नई गति प्रदान करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। भिवानी स्थित पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन

0: कर इसे जनता को समर्पित किया गया। लगभग 620 बिस्तरों की क्षमता वाले इस संस्थान में 320 बेड का नया अस्पताल तथा 300 बेड वाले पुराने सामान्य अस्पताल का एकीकरण किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा इस मेडिकल कॉलेज को 100 MBBS सीटों की स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ की वार्षिक ट्यूशन फीस अपेक्षाकृत कम रखी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में स्थापित महर्षि चेवन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय दक्षिण हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह संस्थान 76 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज परिसर में 600 बेड की क्षमता वाला राव तुलाराम अस्पताल स्थापित किया गया है। स्पष्ट है कि हरियाणा में रेलवे, परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू हुई ये परियोजनाएं केवल आधारभूत संरचना का विस्तार नहीं है, बल्कि भविष्य की टिकाऊ, आधुनिक और जन कल्याणकारी विकास नीति का परिचायक भी है। ये सभी पहले मिलकर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रही है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਿੰਦਰਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक

0: अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सिकंदर ए आजम फिल्म का गीत सुना। बोले के थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत तैयार किया था हंसराज बहल ने। लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, लीजिए सुनिए सपने सजन के। इस फिल्म का गीत मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक के स्वर में, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है समीर ने।

लीजिए अब लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनिए सौतन फिल्म में। सावन कुमार ने गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने।

लीजिए अब मोहम्मद रफी और चंद्रानी मुखर्जी को सुनिए, फिल्म है पूनम। हसरत जयपुरी ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

0: जयमाला कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए हीरा पन्ना इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है आनंद पक्षी ने।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो ये पर्दा।

जरूरत पर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है, जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है। दिल पर रख कर हाथ ये कह

FM 107.2 MHz से आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र पेश ने मुख प्रदेशी खबरां। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन दे तहत आवाजाही खेतर विच हरित हाइड्रोजन दी वरतों नूं उत्साहित करने लई 12 पायलट प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दित्ती गई। हरियाणा विच गौ

0: One, two. Yep. That's right. We back at it again.
1: श्रोते AIRD इस प्रोग्राम का आखिरी गाना गिप्पी गरेवाल की आवाज में
2: छेती छेती आ जा होके तैयार कार खड़ी तेरे बगलों दे बार किप किप किप

0: ख्याल आपको कैसे आया कि हम घर पर नहीं है?
1: अरे दरवाजा जो बंद था।
0: बात दरअसल ये है कि बहुत तेज हवा चल रही है ना, कमरे में धूल मिट्टी आने लगी थी, मैंने बंद कर दिया।
1: बेटा एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बंद दरवाजा हवा को तो रोकता ही है, ये कमबख्त पड़ोसी को भी रोकता है। अब अगर मैं बंद दरवाजा देखकर आगे निकल जाता तो आप लोग एक पड़ोसी की मुलाकात से महरूम रह जाते। बोलो रह जाते ना?
0: ये तो बात है शर्मा जी।
1: लेकिन आपको क्या, आप पड़ोसी को तो कुछ समझते ही नहीं।
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: अरे और क्या, आप बस दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे में ही मग्न रहते हैं, कुछ खबर ही नहीं कि पड़ोसी जिंदा भी है या नहीं, मोहल्ले में क्या हो रहा है आपको कुछ खबर भी है? अरे और तो और, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरे घुटने के दर्द का क्या हाल है।
0: बात दरअसल ये है कि कॉलेज में काम कुछ इतना ज्यादा हो जाता है शर्मा जी, कि जब घर वापस आता हूँ तो इस काबिल ही नहीं रहता कि कहीं जा सकूं। हाँ बताइए ना, घुटने के दर्द का क्या हाल है?
1: बताता हूँ, लेकिन पहले बहू को तो बुला लो।
0: क्यों?
1: अरे भाई फिर उसे दोबारा सुनाना पड़ेगा।
0: भाई कमला, शर्मा जी आए हैं।
2: नमस्ते शर्मा जी।
1: अरे आओ आओ, जीती रहो बेटा। अभी अभी मैं तुम्हारे विद्वान पति को ये समझा रहा था कि पड़ोसी का नाता बहुत ऊंचा नाता है, इसे यूं ही मत समझो।
0: लेकिन शर्मा जी मैंने ये तो नहीं कहा कि ये नाता कोई मामूली नाता।
1: अरे भाई कहा नहीं, लेकिन इस नाते को निभाने के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं कि मेरे घुटने के दर्द का क्या हाल है।
2: अरे ये तो वाकई इनकी गलती है, इन्हें पूछना चाहिए ना?
1: जीती रहो बेटा जीती रहो। अब अगर ये अपने कर्तव्य का पालन ना करें तो मैं भी ऐसा ही करूं है? जो पड़ोसी पूछने नहीं आया उसके घर जा जाकर बता रहा हूं।
0: क्या गजब कर रहे हैं शर्मा जी, इस तरह तो दर्द और बढ़ जाएगा।
1: अरे तुम दर्द की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं चाहे जान ही चली जाए, लेकिन ये नहीं सुनना चाहता कि शर्मा जी ने पड़ोसी का रिश्ता नहीं निभाया।
0: आप भी बस, खैर आपने अपना घुटना डॉक्टर को दिखाया था कि नहीं?
1: लोगों के जोर देने पर गया था एक डॉक्टर के पास।
0: क्या कहा उसने?
1: अजी कहता क्या, पहले तो 10 रुपए घुटना देखने की फीस ही ले ली उसने।
0: अब शर्मा जी आप समझिए ना, महंगाई का जमाना है, डॉक्टर को भी तो आखिर जिंदा रहना।
1: अजी उसने फिर एक और लुटेरे के पास भेज दिया, कहने लगा कि एक्सरे करवाओ, उसने और 10 का नोट रखवा लिया।
0: ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
1: जी मैं जानता हूँ तुम कहोगे उसे भी तो जिंदा ही रहना है।
0: जाहिर है जाहिर है।
1: अरे फिर नुस्खा लिख कर दिया, वो मैं केमिस्ट के पास ले गया, उसने 10 रुपए गोलियों के लगा दिए, वो बेचारा भी क्या करे, उसे भी तो जिंदा रहना है।
2: अच्छा तो शर्मा जी आपको गोलियों से कुछ फायदा भी हुआ?
1: फायदा? बेटी मैंने वो गोलियां खाई नहीं।
0: मगर क्यों?
1: अरे भाई आखिर मुझे भी तो जिंदा रहना है।
0: अगर शर्मा जी आपको डॉक्टरों पर विश्वास नहीं तो किसी हकीम को क्यों नहीं दिखा देते?
2: और क्या, वो जो गली के नुक्कड़ पर हकीम है ना, वो तो शायद आपका मित्र है ना?
1: वो हकीम वो मस्करा समझता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वहम है।
2: अच्छा?
1: हाँ। अरे बेटी एक दिन मैं गया था उसके यहाँ भी, कहने लगा शर्मा जो बीमारी हो तुम्हें आज कह दो, सबका इलाज कर दूंगा।
2: फिर
1: क्या, मैं सच सच बताने लगा कि सर में चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा सा रहता है, कानों में साए साए की आवाज आती है,
0: सीरियस,
1: भूख अच्छी तरह नहीं लगती, दिल धक धक धक धक धक धक धक करता है, हाथ कभी कभी कांपने लगते हैं, घुटने में दर्द रहता है। अभी मैं यहीं तक पहुंचा था कि उसने मुझे रोक लिया और जानती हो क्या कहने लगा?
2: क्या कहा?
1: कहने लगा शर्मा मेरे दवा खाने की तमाम दवाइयां बाल्टी में डालकर पी जाओ, आराम आ जाएगा। अब तुम ही बताओ ऐसे हकीम के पास कौन जाए इलाज करवाने के लिए।
2: अच्छा शर्मा जी कोई मोहल्ले की खबर सुनाइए, हम लोगों को तो काम काज से ही फुर्सत नहीं मिलती, कुछ पता ही नहीं चलता।
1: अरे तो बेटा क्या हुआ, मैं किस काम के लिए हूँ, पूछो क्या पूछती हो है?
2: कोई मोहल्ले में मंगनी शादी हुई इन दिनों।
1: अरे क्या तुम्हें नहीं पता, गुप्ता जी की लड़की की मंगनी हो गई।
2: अच्छा?
1: हाँ।
2: बड़ी अच्छी लड़की है ना शर्मा जी?
1: अरे क्या कहती हो, वो लड़की तो अपने होने वाले पति को लखपति बना सकती है, लेकिन एक शर्त है।
0: वो क्या?
1: वो ये कि पति को पहले करोड़पति होना चाहिए। अच्छा भाई प्रोफेसर साहब, अब आप ये बताइए कि फारसी तो पढ़े हुए है ना?
0: जी हाँ, बीए में फारसी मेरा एक सब्जेक्ट था।
1: अच्छा तो ये बताइए कि गुफ्तो शुनील का क्या मतलब है, मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है।
0: गुफ्तो शुनील, कहना और सुनना, यानी बातचीत करना।
1: और हुर्दोनोश का?
0: अब इसका मतलब है खाना पीना।
1: इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द गुप्तो सुनील से भी अच्छा है।
0: जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। शर्मा जी जाहिर है कि खाने पीने से अच्छी बात और क्या हो सकती
1: अगर
0: है?
1: ये बात है।

0: ये ख्याल क्यों नहीं आया कि शर्मा जी को चाय पानी को पूछना चाहिए था? आप सिर्फ गुफ्तो सुनील ही करते रहे, अरे खुर्दोनोश की तो बात भी नहीं कर रहे हैं।
1: आप तो खुद लोगों को बातों में ऐसे लगाते हैं कि खाने पीने का ख्याल ही नहीं आता। मैं अभी चाय।
0: अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा बेटी जाओ, लेकिन देखो इतना ख्याल रखना कि चाय सिर्फ पीने के काम आती है और हम लोग बात खाने पीने की कर रहे थे। ये कौन आ गया हिस्सा बांटने वाला?
2: मैं देखती हूँ। आओ पप्पू।
3: दीदी क्या मेरे पिताजी आपके यहाँ हैं?
1: हाँ हाँ अंदर हैं।
3: पिताजी घर चलिए, आपको माँ बुला रही है।
0: क्यों भाई क्या हुआ?
3: घर में जीजाजी आए हैं।
0: ओफो, अरे तो फिर मेरे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जीजाजी को इधर ले आओ।
4: हाँ बेटे जाओ, उनको यहीं बुला लो।
3: लेकिन माँ कहती है आप घर आइए।
0: अरे तो माँ को भी साथ ले आओ ना, ये भी तो घर है। क्यों प्रोफेसर साहब?
4: ये भी तो आती है घर है।
3: लेकिन माँ कहती
0: है। अरे दौड़ जाते, माँ कहती है, माँ कहती है। माँ को क्या पता कि पड़ोसी का नाता क्या होता है? जीजाजी आए। अरे तो जीजाजी आए हैं तो क्या हुआ, वो कोई सिर्फ अकेले मेरी जवाई थोड़ी है, सारे मोहल्ले के जवाई है, जिस घर में चाहे जा सकते हैं। आजकल तो लोगों का खून सफेद हो गया है। अरे भाई प्रोफेसर साहब।
4: जी सर।
0: हमारे जमाने में एक घर का जमाई सारे गांव का जमाई समझा जाता
4: क्या
0: था।
4: बात।
0: अरे प्रोफेसर साहब पूछना अपनी आंटी से, कई बार ससुराल गया तो अपने ससुर के घर ही नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही गांव वाले दबोच कर बैठ गए, कई कई दिन उनके घरों में ही पड़ा रहता था।
4: जी, ये बच्चा है इसको क्या पता। जाओ बेटे पप्पू, अपने जीजाजी को और अपनी माँ को यहीं बुला लो।
0: असल में आजकल पड़ोसी के नाते को कोई नाता ही नहीं समझता।
4: क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, क्यों नहीं समझता? अब देखिए हम समझते हैं। लीजिए आंटी जी भी आ गए।
0: अरे पार्वती है, तुमने मुझे क्यों बुलवा भेजा? अरे ये क्या अपना घर नहीं है?
5: पराया क्यों है? कृष्ण आया है इसलिए बुलवाया।
0: तो कृष्ण को यहाँ नहीं बुला सकते क्या? क्यों भाई कृष्ण है?
6: पिताजी मैंने आने को मना तो नहीं किया था।
5: वो तो मैंने सोचा था कि चाय मिलकर ही पिए।
0: चाय मिलकर यहाँ भी तो पी जा सकती है। प्रोफेसर बेटा कमला से कह दो केतली में पानी और डाल दे।
4: यहाँ पानी और डाल दिया है। अब बल्कि मुझे कुछ मिनट की इजाजत दीजिए, मैं कुछ खाने को ले आऊं।
5: अरे तुम क्यों तकलीफ करते?
6: आप बैठिए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं।
0: जरूरत क्यों नहीं है, उनके जीजा घर में आए तो क्या उसकी खातिर नहीं करेंगे?
4: जी हाँ ये तो मेरा फर्ज है।
0: अरे जाइए आप, इन लोगों को क्या पता अब इनको क्या क्या किस्से सुनाऊं। अरे भाई हमारे गाँव के एक आदमी ने अपनी गधी साथ वाले गाँव में बेच दी, इसी रिश्ते से हम कई महीने तक उस गांव में जाकर रोटियां खाते रहे, और ये रिश्ता बेटा उस दिन टूटा जिस दिन वो गधी मर गई।
4: वैसे शर्मा जी हंसने की बात नहीं, उन दिनों में लोग इस बात की कद्र करते थे, लोग पड़ोसी को भगवान का रूप समझते थे, आजकल वो बात ही नहीं रही।
3: माँ मुझे पानी पीना।
0: अरे भाई माँ से कहने की क्या जरूरत है, है? फ्रिज खोलो और पी लो, तुम लोग इसे अपना घर ही नहीं समझते।
3: हाँ पप्पू पियो पियो। पिताजी मैं कहाँ बैठूं?
0: अरे कुर्सी पर, और कहाँ मेरे सिर पे बैठेगा।
3: मैं पानी पीने गया तो मेरी कुर्सी पे कमला दीदी बैठ गई।
1: अरे अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, ये लो मैं उठ जाती हूँ।
5: अरे तुम क्यों उठती हो?
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर खड़ी ही हो जाऊँ।
0: अरे भाई खड़ी होने में कोई बुराई नहीं, अपने बहन भाइयों के लिए, बल्कि इससे भी ऊंचे रिश्तेदार, मेरा मतलब है पड़ोसियों के लिए, अगर जरा सी तकलीफ कर भी ली तो क्या हुआ।
1: अच्छा आप घर चलिए, चाय तो पी ली है।
0: ये फिर घर का चक्कर शुरू क्यों हो गया, ये क्या घर नहीं है।
5: कृष्ण आपसे एक प्राइवेट बात करना चाहता है।
0: बस इतनी सी बात? अरे प्रोफेसर बेटा तुम्हारा जीजा मुझसे और अपनी साल से प्राइवेट बात करना चाहता है, आप जरा बाहर हो जाइए।
4: जी हाँ? बाहर? एक ही तो कमरा है।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आइए जी हम लोग बाहर गली में ही खड़े हो जाते हैं।
7: मैंने कहा सुनते हो, ये मकान हमारा ही है ना?
4: सच पूछो तो यकीन नहीं आता।
7: तो क्या ये लोग रात को हमें सोने देंगे इस मकान में?
4: क्यों सोने क्यों नहीं देंगे?
7: तुम्हें विश्वास है कि ये मकान हमारा है?
4: नहीं।
7: तो फिर क्यों सोने देंगे?
4: इसलिए कि हमारा उनका एक बहुत ही गहरा नाता है, पड़ोसी का नाता।
0: अरे भाई प्रोफेसर हैं? अरे हमारी बातें तो खत्म हो गई बेटा।
4: जी शर्मा जी।
0: अरे बेटा अब तुम्हें क्या बताएं, ये जो तुम्हारा जीजा है ना, अब ये 3-4 दिन यहीं रहेगा, तुम जानो हमारे घर में तो जगह है नहीं, तुम्हारे यहाँ ही टिक जाएगा है। अरे बेटा है।
7: लेकिन सुनो हा? हमारे पास कौन सी लंबी चौड़ी जगह है?
4: निभाओ ना, यही तो है पड़ोसी को नाता।
0: अरे जियो बेटा, प्रोफेसर जियो, क्या निभाया है तुमने पड़ोसी का नाता।
4: जी हाँ पड़ोसी।

आप सुन रहे थे दिलीप सिंह की लिखी हास्य नाटिका पड़ोसी का नाता। निर्देशक थे कुमुद नागर। अब आज का हवा महल समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो

0: मिलती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा

अभी आपने ताल फिल्म में सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक को सुना। संगीत दिया था एआर रहमान ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। अब आपको सुना रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत। संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, चित्रलोक के शेष गाने इस अंतराल के बाद।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट

0: अवश्य करवाएं और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

प्यार तो होना ही था, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। बोल लिखे हैं विनोद महेंद्र ने और संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरण

नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित कर

0: बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा. न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है. सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी. विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है. ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है. इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. ये आकाशवाणी है. ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था. श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे.
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे. एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे. 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे. देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं. इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे.
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे. जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ. कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं. प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं. पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है. मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार.
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की. वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है.
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है. आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है. वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के

0: बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं चरस फिल्म के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, साथ दिया है आनंद बख्शी ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को चरस फिल्म में सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी का गाया काली घटा फिल्म का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

आदमी और इंसान। अब सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है रवि ने।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शागिर्द।

अंतिम पेशकश फिल्म है दूसरा आदमी। स्वर दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, और साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी भी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को।

0: बेमिसाल गागा है वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार।
1: बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
0: रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह।

नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है।

मेन स्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया।

1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया।

बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में नसीर अपनी कामयाबी की कहानी आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी अदाकारी के चर्चे सात समंदर पार तक पहुंच गए। सन 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। लेकिन नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्मों से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया, तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती।

0: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह।
1: ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचा-ए-अतफाल है दुनिया मेरे आगे।

दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया।

नसीर साहब की एक और दिली ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश थी गांधी के रोल को करने की। कहते हैं जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल।

एक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्ध सत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आई सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को। कुछ पाने

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्मफेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्मफेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: हम बोल रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

राहें मोहब्बत सजी है चांद तारों से, इस रात का क्या कहना। लगता है जो दुनिया मिल गई हो तुम्हें पाकर, इस साथ का क्या कहना।

मचल रहा है दरिया जैसे समंदर में मिल जाने को, है बेताब ये दिल उल्फत के गुलशन में तेरे संग खिल जाने को।

बजने लगते हैं दिल के तार जब भी तुम गुनगुनाते हो, ठहर जाती है लबों पे दिल की बात जब भी तुम आते हो।

कहानी तेरी मेरी इन रातों में रंगीन हुई जाती है। पूछो तो जरा दिल से कि ये मोहब्बत क्यों इतनी संगीन हुई जाती है।

ये कैसा तिलिस्म है प्यार का कि हम हो गए हैं तेरे बस में, भूल कर जमाने की रवायतें और दुनियादारी की रस्में।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz से यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन दे तहत आवाजाही खेतर विच हरित हाइड्रोजन दी वरतों नूं उत्साहित करन लई 12 पायलट प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दित्ती गई। हरियाणा विच गौशालावां नूं पशुआं दी देखभाल लई 820 ई रिक्शा मिलणगे। मुख्यमंत्री ने उच्च शक्ति प्राप्त खरीद कमेटी दी मीटिंग विच 10,25,00,000 रुपए दी लागत नाल ई रिक्शा खरीदण नूं मंजूरी दित्ती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम दे बस्सी पिंड विच प्रतिदिन 1000 मेगा लीटर दी समर्था वाला दूजा जल घर बनाउण लई मंजूरी दित्ती। हरियाणा दे 9 जिले विच 3 सेहत उप केंद्रां नूं प्राइमरी सेहत केंद्रां विच अपग्रेड कीता जावेगा। हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नकोदर दे अलमस्त बापू लाल बादशाह दरबार विच आयोजित 43वें सालाना मेले विच शिरकत कीती। हरियाणा पशु पालन अते डेयरी विभाग दी उच्च पदरी खरीद कमेटी ने उच्च गुणवत्ता वाले फ्रोजन वीट्स दे सुरक्षित भंडारण लई तरल नाइट्रोजन दी निर्विघन सप्लाई लई अगले 2 सालां लई रेट इकरारनामे नूं प्रवानगी दित्ती। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवावां विच सिद्धी भर्ती वाले ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ 20% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਰ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ,

0: बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
0: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
0: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: तो उन पेश है पंजाबी गीता नाल दा प्रोग्राम सुरसांझ। आओ पहला गीत सुनदे हां मीत मलकीत दी आवाज़ विच।

0: करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: लो हुन सुनो अगला गाना, आवाज है राणे दी।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आओ सुनते हैं अगला गाना। आवाज है लैम्बर हुसैनपुरी की।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आओ एक बार फिर सुनिए लैम्बर हुसैन पुरीदा अगला गाना।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।

0: आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हुन सुनवा रहे हैं सुरसांझ प्रोग्राम दा अगला गाना। आवाज है रब्बी शेरगिल दी।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का

0: सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जय हिंद।